बिलावल भुट्टो जरदारी पाक फौज के रेड लाइन करार ॾेई छॾियो। कश्मीर मसले के हल लाइ ट्रुथ एंड रिकंसल्टेशन कमीशन जोड़ने की भी तजवीज़ पेश। आजाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में पार्टी अगुवाणन के खिताब कंदे बिलावल भुट्टो चयो तो पाक फौज असांजी रेड लाइन है, उन खिलाफ का भी गाल बर्दाश्त न कंदासी। आलमी साजिशन के समझणो पवंदो, लफ्जन की दुरुस्त चूंड करनी पवंदी। कश्मीर में दहशतगर्दी वाली सियासत की हिमायत न कंदासी। मौजूदा हालतों जो मुकाबलो ताकत से नथो करे सकजे, जिम्मेवारी जो मुजाहरो करणो पवंदो। मौजूदा बोहरान एक वफाकी वजीर के करे थियो आहे, वफाकी हुकूमत मसलो हल करे। कश्मीर जो मसलो कश्मीर में ही हल करणो पवंदो। मोदी सिंतास मुआदे से हमलो कर रो है, असा सब जवाब देने लाय तैयार आयू। सिंधु के पानी से को भी ठा न कंदासी। बलोचिस्तान में खारिजन खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान में टे दहशतगर्द मारजी वया। बलोचिस्तान में पाक फौज पुलिस एफ सी जो गडियल ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी जरियन मूजिब फोर्सिस के कार्रवाई में टे दहशतगर्द मारजी वया। ऑपरेशन शाबान में मारजी वयल दहशतगर्दन जो अंग 88 थी वयो। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दन के थाकन के कामयाबी से निशानो बनायो। 5 जुलाई का बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन में 126 दहशतगर्द मारजी चुका है। सियासत के मैदान में सियासत कयो, असांजे बारन जी तोहीन न कयो। इदारन ते सियासत करण जो कंहिंखे भी हक न है। मौलाना ताहिर अशरफी जी पैगाम। अमुन कमेटी जी वफद सूदो वडे वजीर मुराद अली शाह से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध जो रवायतू ए मजहबी हम आएंगी पाकिस्तान लाए मिसाल करार। मौलाना ताहिर अशरफी चयो तो फोर्सिस जा जवान पघारुन लाए न पर सरहदन ते असांजी हिफाजत लाए कुर्बानी डेई रहा आहिन। सिंध में सदाई मोहब्बत ए अखुवत जो पैगाम दिनो वेंदो आहे। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह चयो तो अमुन बर्दाश्त ए कानून की बालादस्ती जरिए ही इस्तेहकाम आणे सकजे तो। शर्जील मेमन चयो तो वतन लाए कुर्बानी डींदड़न ते फख्र आहे। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान जो मौलाना फजल रहमान खान शहीदन बाबत बयान ते माफी वठण जो मुतालबो। मलिक अहमद खान चयो तो दहशतगर्दन जो को भी मजहब ना होंद, कौम दहशतगर्दन की खात्मे ते मुतफिक है। मौलाना फजल रहमान

0: लाइव स्टॉक के शोबे में मेहनत से कम किया वे तो एक साल अंदर मैशियत बेहतर कर सकती थी। बलोचिस्तान में अगवा थियल अगूणो एक्साइज डायरेक्टर सईद मेमण बाजियाब। सईद मेमण 59 दिन का बाजियाब थी कराची वाले घर पहुंचो। वफाकी आइनी अदालत एसपीएससी खिलाफ जांच जो हुक्म मुअत्तल कर छोड़ो। इम्तिहान में कामयाब थींदड़ उम्मीदवारन जा इंटरव्यूज रोकण बाबत सिंध हाईकोर्ट जो हुक्म भी मुअत्तल। फेल थियल उम्मीदवारन जा पेपर्स बीहर चेक करण वारो हुक्म भी मुअत्तल। आइनी अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अपील से धुरन के नोटिस जारी कर छड़िया। जस्टिस बाकिर नजफी रिमार्क्स दींदे चयो तो सिंध हाईकोर्ट अबूरी हुक्मनामे में ही रिलीफ दई छड़ियो आहे।
1: ॾियारियां थो त हुनखे घर छॾण जी ज़रूरत नाहे, शहर छॾण जी ज़रूरत नाहे, सिंध छॾण जी ज़रूरत नाहे। हुनजे घर जी रखवाली चौकीदारी दादर ऐं चार दीवार जे तकदस जे लाइ चयो आहे की जेकॾहिं चौकीदारी करणी पई त चयो आहे रिया कुमारी जे घर जी चौकीदारी कंदी।
2: असांजे फैमिली खे तंग कयो थो वञे, असांजे पोटनार खे तंग कयो थो वञे। ॼाणी ॾियो था त हिकिड़े पासे चयो, जे नथा ॾियो त हिकिड़े पासे चयो।
0: मौलाना फजल रहमान की हिदायत से जे यू आई वफद के सखर पहुंची प्रिया कुमारी के वालिद राजकुमार से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान के भाव जियाउर रहमान अब्दुल कयूम हालेजवी राशिद महमूद सुमरो और बेन राजकुमार से मुलाकात कर हमदर्दी का इजहार किया। प्रिया कुमारी के वालिद चयो तो मौलाना फजल रहमान के अपील है तो बिलावल भुट्टो जरदारी का पुछी बुधाए तो न्याणी जिंदा आहे या न। असा के सिंध छड़न लाय परेशान कयो पे वञे, घर में खोटाई कई पई वञे, प्रिया न मिली ए तंग कयो वयो तो सिंध छड़े वेंदासी। जेयू अगवान राशिद महमूद सुमरो चयो तो प्रिया के कुटुंब के लड़ाने की कोशिश कई पी वे, खेन सिंध छड़न की जरूरत ना है, असा संदन चौकीदारी कंदासी।

0: मीडिया ब्रीफिंग ए इंटरव्यूज में शिरकत लाइ अगवाट इजाज़त वठण लाज़मी करार। डिजिटल मीडिया ए बेन अवामी फोरमन ते सरकारी हैसियत में शिरकत बे अगवाट इजाज़त शम मशरूत। इजाज़त मिलण की सूरत में ऑफिसर रुगो मंजूर थियल एजेंडा ताईं ॻाल्हि ॿोल महदूद रखंदो। जारी जांच इंटेलिजेंस ए ऑपरेशनल मामलन की हसास ॼाण ज़ाहिर करण ते पाबंदी हूंदी। सिंध के मुख्तलिफ शहर में खुराक खाते जा छापा। कणक जो जखीरो कल हजारे बोरियो हथ। बाडर में मुख्तलिफ राइस मिल्स ए व्यापार के गोदामन से छापा हणी कणक जो हजारे बोरियो जब्त कर गोदाम सील कया व्या। सेठारजा में असिस्टेंट कमिश्नर ठरी मीरवा जा हसास इदारे के अमलदार से गड कणक जखीरो कंदड़न खिलाफ कार्रवाई। केतरा ही गोदाम सील। उडेरो लाल में एसी मटियारी व्यापारी छापो हणी गोदाम सील कर कणक जब्त कई। सिंधड़ी में भी कणक जो हजारे बोरियो हथ कई व्यू। चंबड़ भरसा मदरसे में खुताबी मुबैना बदफेली जो निशानो बढ़ाने का जहरीली शय खाराए कतल। बारन वरन के इमरान कोराई के घंटी जोगी हालत में अस्पताल मुंतकिल कयो वियो जिते हुन दम डिनो। पुलिस शक के बुनियाद ते मदरसे के बिन मौलवियन के हिरासत में वठी छो। एसएसपी टंडवलियार अस्पताल पहुंची डॉक्टर का तफसील वरता। संदस चवण हो तो शुरुआती जांच मूजिब खुताबी के बदफेली जो निशानो बढ़ाने का जहरीली शय खाराई वही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचान का खबर पवी।
1: छोकरा ॾियो, हे ॾिसो था।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

थियो अमेरिकी सेंट्रल कमांड पारां ईरान ते हमलनि जो ताज़ो सिलसिलो मुकमिल करण जो ऐलान। सेनेट काम जो चवणु आहे त ताज़नि हमलनि में ईरानी कमांड मर्कज़नि फिज़ाई दिफ़ाई ड्रोन सलाहियत ऐं साहिली निगरानी वारनि मर्कज़नि खे निशानो बणायो वियो। बंदर अब्बास में बि फ़ौजी ठिकाणनि खे निशानो बणाए तबाह कयो। कारवाइन जो मक़सद हरगंज लांग में हमलनि जी ईरानी सलाहियत खे कमज़ोर करण हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त खेसि डेड लाइन ॾियण पसंदि नाहे, ईरान खे पंहिंजो रवैयो ठीकु करणु घुर्जे। डोनाल्ड ट्रंप गुज़िरियल ॾींहुं धमकी ॾींदे चयो हो त ईरान मुआहिदो न कयो त ईंदड़ हफ़्ते बिजली घरनि ऐं पुलनि खे तबाह कयो वेंदो। ईरान में अञा कुझु जंग विढ़ण जी सलाहियत आहे पर इहा घणी नाहे। अमेरिकी फ़ौज ईरान जी तवानाई हदफ़नि खे आख़िर में निशानो बणाईंदी। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाव चयो आहे त ईरान कॾहिं बि जंग जी आजियां नाहे कई ऐं न वरी करे थो, पर मुल्क जी क़ौमी सलामती ऐं मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ हर वक़्तु तयारु रहंदो आहे। दुश्मन जी हिकमत अमली तब्दील नाहे थी। ईरानी फ़ौज खे जारियत जो मुक़ाबिलो करण जी आज़ादी हासिल आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई जो चवणु आहे त ईरान जो फ़िलहाल ॻाल्हियुनि जो को बि इरादो नाहे। अमेरिका पंहिंजा वाइदा न पाड़िया त मुफ़ाहिमती यादाश्त तहत ज़िमेवारियूं ख़तम कयूं, ॿी धुर ज़िमेवारियूं ख़तम कयूं त ईरान खे बि पंहिंजे ज़िमेवारियुनि खां पासो करणो पवंदो। बिलावल भुटो ज़रदारी पाक फ़ौज खे रेड लाइन करार ॾेई छॾियो। कश्मीर मसइले जे हल लाइ ट्रुथ एंड रीकंसिलेशन कमीशन जोड़ण जी बि तजवीज़ पेश। आज़ाद कश्मीर जे शहर मुज़फ़राबाद में पार्टी अॻवाननि खे ख़िताब कंदे बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त पाक फ़ौज असांजी रेड लाइन आहे, उन ख़िलाफ़ का बि ॻाल्हि बर्दाश्त न कंदासीं। आलमी साज़िशनि खे समुझणो पवंदो, लफ़्ज़नि खे दुरुस्त चूंड करणी पवंदी। कश्मीर में दहशतगर्दी वारी सियासत जी हिमायत न कंदासीं। मौजूदा हालतुनि जो मुक़ाबिलो ताक़त सां नथो करे सघिजे, ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। मौजूदा बुहरान हिकु वफ़ाक़ी वज़ीर जी करे थो। वफ़ाक़ी हुकूमत मसइलो हल करे कश्मीर जो मसइलो कश्मीर में ई हल करणो पवंदो। मोदी सिंतास मुआहिदे ते हमिलो करे रहियो आहे। असां सभु जवाब ॾियण लाइ तयारु आहियूं। सिंधूअ जे पाणीअ ते को बि ठाह न कंदासीं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनते हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

हे हुसन दा मल सब कोई जाने हुसन खास जहूर जात दा है अहमद नाम सदावे विच अरब सुना जावे जात सिफात दा है कुर्सी अर्श ते हूर मलक अकसुई आली दरजात दा है शमा हुसन दा नूर।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

Tommy.

0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GFM 88
3: नेटवर्क
0: सिंध की आवाज़।

अमेरिका ईरान में जमीनी फौज उमारण ते गौर शुरू करे छो। अमेरिकी अखबार जी दावा, डोनाल्ड ट्रंप जो चवण है ते ईरान के हर सूरत में शिकस्त डींदी। खैस डेडलाइन डेण पसंद ना है। ईरान के पैंजो रवैयो ठीक करण घुर्जे। ईरान मुआहदो न कयो ते ईंदड़ हफ्ते बिजली घर ने पुलन के तबाह कयो वींदो। ईरान में अजा कुछ जंग विढ़ण जी सलाहत है पर उहा घड़ी ना है। अमेरिकी फौज जा पंजे डीं भी ईरान ते शदीद हमला। अवाज जा बार बंदर अब्बास केश धमाकन सा गूंजी उथिया। गवर्नर हमगान जो चवण है ता अमेरिकी हमले सा केश में फिश पाउडर ठाईंदड़ फैक्ट्री के नुकसान पहुंतो है। फैक्ट्री खाली हुजण सबब जानी नुकसान न थियो। अमेरिकी सेंट्रल कमांड पारा ईरान ते हमलन जो ताजो सिलसिलो मुकमल करण जो ऐलान। सेनेट काम जो चवण है ता ताजन हमलन में ईरानी कमांड मरकजन फिजाई दिफा ड्रोन सलाहियत ऐं साहिली निगरानी वारनि मर्कज़नि खे निशानो बणायो वियो। बंदर अब्बास में बि फ़ौजी ठिकाणनि खे निशानो बणाए तबाह कयो। कार्रवाइनि जो मक़सदु हरगम्ज़ लांग में हमलनि जी ईरानी सलाहियत खे कमज़ोर करणु हो।

0: ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालेबाफ चयो आहे त ईरान कॾहिं बि जंग जी आजियां नाहे कई ऐं न वरी करे थो, पर मुल्क जी क़ौमी सलामती ऐं मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ हर वक़्तु तयारु रहंदो आहे। दुश्मन जी हिकमत अमली तब्दील नाहे थी। ईरानी फ़ौज खे जारियत जो मुक़ाबिलो करण जी आज़ादी हासिल आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई जो चवणु आहे त ईरान जो फ़िलहालु ॻाल्हियुनि जो को बि इरादो नाहे। अमेरिका पंहिंजा वाइदा न पाड़े मुफ़ाहमती यादाश्त तहत ज़िमेवारियूं ख़तम कयूं, ॿी धुर ज़िमेवारियूं ख़तम कयूं त ईरान खे बि पंहिंजे ज़िमेवारियुनि खां पासो करणो पियो। सखर जे सेंटर जेल में क़ैदी मुबैना तौर फाहो खाई आपघात करे छॾियो। 24 वरियन जे क़ैदी दिनेश कुमार जेल अस्पताल जे वॉशरूम में अगट सां फाहो खाधो। जेल इंतिज़ामिया जो चवणु आहे त आपघात कंदड़ क़ैदीअ खे शराब जे केस में जेल मुंतकिल कयो वियो हो। वारसन लाश पोस्टमार्टम कराइण खां इनकार करे छॾियो आहे। अठ अठ मोरीअ में बिरोही धुरियुनि में ज़मीन जे तकरार तां झेड़े जो जरगो। धुरियुनि ते 85 लख ॾंड। लाल मोहम्मद बिरोही ऐं खैर मोहम्मद बिरोही धुरियुनि में 25 सालनि खां हलंदड़ तकरार ऐं झेड़े जो जरगो। फ़ैसिलो अली ज़िले चेयरमैन अली अकबर जमाली ऐं ॿियनि जी सरपंची हेठि थियो। फ़ैसिले में 10 ॼणनि जे ज़ख़्मी थियण जो, ॿिन्ही धुरियुनि ते मजमू तौरु 85 लख रुपया ॾंड। धुरियूं ॾंड जी रक़म 2 महीननि अंदरि फ़ैसिले जे अमीननि वटि जमा कराईंदियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
3: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पीसी मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/gfm88 के पेज के ऊपर आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कीजिएगा और कॉल करने के बाद बात कर सकते हैं आप लोग. दो अदर सेगमेंट होंगे हमारे जिसमें हम आप लोगों के लाइव कॉल्स को एंटरटेन करेंगे, ठीक है. सो ये होगा और इसी के साथ हम चलेंगे आगे. हम प्ले करेंगे एक और गाना और इस गाने के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जाने. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं.

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: एलोवेरा फैन वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: जिंदा मुझे हर बार। सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब जितने भी प्रेजेंटर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम के ऊपर हो, लाइक रेडियो के ऊपर हो या फिर टेलीविजन के ऊपर हो, किसी भी मीडियम के ऊपर अगर कोई होस्ट या फिर कोई प्रेजेंटर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को या अपनी सारे दुख दर्द को पसे पुश डालकर आपके लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए वो अपने सारे दुख भूल जाता है, तो इट मीन्स के आपका प्यार करे है जिंदा उसे हर बार। तो ये बहुत खूबसूरत लाइंस जो कि मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जाते हैं। इसी बात पे हम लेंगे नेक्स्ट कॉलर और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: जी रुखसार, कैसे हो आप? मैं हीरा बात कर रहा हूँ सांगर से।
0: हीरा बात कर रहे हैं?
1: जी हीरो मेरा नाम है, सांगर से बात कर रहा हूँ।
0: हीरो या हीरा पहले सोच ले, हीरो या हीरा?
1: हीरो हीरो
0: हीरो। ओके, अच्छा हीरो मुझे ये बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला सांगर से बात कर रहा हूँ।
0: ओके ठीक है, गाना सुनाएंगे कोई हीरो वाला?
1: जी
0: हीरो वाला कोई गाना सुनाएंगे हमें?
1: नहीं अभी मैं गाना तो नहीं सुनाना चाहता, लेकिन ऐसे ही मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की है और शरीक हो रहा हूँ। जी जी
0: चले, जबरदस्त प्रोग्राम सुनते हैं।
1: और कैसे हो रुखसार, ठीक हो आप?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाना आपको गाना नहीं आता तो आप हीरो कैसे हुए? ये आपका अच्छा। वाकई आपका नाम है या फिर वैसे ही आपने रखा हुआ शो किया?
1: नहीं मेरा नाम है हीरा, हीरो है।
0: अच्छा नाम ही हीरो है, चले ठीक है।
1: तो मुझे आते हैं लेकिन अभी सुना नहीं सकता मैं।
0: अभी सुना नहीं सकते, चले जबरदस्त, बड़ी अच्छी हीरो है।
1: आपका शो बहुत प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, हम भी सुन रहे हैं मटियारी चैनल पे। और जी जी सारे सुनने वालों को हमारे तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू। 03000113488 जिसके ऊपर आप लोग कॉल्स कर रहे हैं, सेगमेंट है हमारा सुर लगाओ गाना सुनाओ। और अब से ठीक 12 बजे के बाद हमारा सेगमेंट होगा हरा भरा पाकिस्तान। मैं कहने वाली थी बोलो तो माने, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा और 12 बजे के बाद हम कर रहे होंगे हरा भरा पाकिस्तान। अच्छा नेक्स्ट कॉलर, हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: हाफिज सावल बात कर रहा हूँ मोरो से, बजट पर क्या है, ठीक हो?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाफिज सावल भाई जल्दी से अच्छा सा गाना।
1: दिल ने जाना अल्लाह मुझे
0: आवाज चली गई आपकी। हेलो
1: यार जी कारत पे दिल ने जाना।
0: ओके किसी को डेडिकेट करना है? चलिए जी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम प्ले करने जा रहे हैं जी गाना और हाफिज भाई का गाना हम ब्रेक के बाद वापस आकर प्ले करेंगे। हमारे पास मौजूद है बिलाल सईद की आवाज में खूबसूरत सॉन्ग, इसको सुनेंगे इंजॉय करेंगे और इसी के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम फेवरेट रेडियो स्टेशन जी एफ एम रेडियो नेटवर्क सिंध।

में शुरू थियल छिकताण ते गणती ज़ाहिर करे छॾी। धुरियुनि खां सहप ऐं सबर जो मुज़ाहिरो करण जो मुतालबो। मसलो ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते ज़ोर भरियो। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन चयो आहे त हिते जी मौजूदा सूरत हाल ते नज़र आहे। पाकिस्तान मसले जे हल लाइ ॻाल्हियुनि ते यकीन रखे थो। घुरियूं सूरत हाल ते सबर ऐं सहप जो मुज़ाहिरो कनि। तकरार कंहिंजे मुफ़ाद में नाहे। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहणु घुर्जे। अमेरिका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ते हमला जारी। अमेरिकी फ़ौज जा ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते फिज़ाई हमला। ईरानी शहर सेननान में हवाई अॾे खे बि निशानो बणायो वियो। सेनेट काम मूजिबि अमेरिकी फ़ौज आपना हर्मुज में ख़तरो बणजंदड़ ईरानी सलाहियतनि खे निशानो बणायो आहे। ईरान जा बि ख़िते में मौजूदु अमेरिकी अॾनि ते ड्रोन ऐं मिज़ाइल हमला। ईरानी फ़ौज अर्दन, बहरीन ऐं कुवैत में मौजूदु अमेरिकी फिज़ाई अॾनि खे निशानो बणायो। अर्दन 8 ईरानी मिज़ाइल फिज़ा में तबाह करण जी तस्दीक करे छॾी। अमेरिका ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण ते गौर शुरू करे छॾियो। आपना हर्मुज भरिसां ईरानी ॿेटनि ते अमेरिकी फ़ौज मोकिलण जो इम्कान। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जे रिपोर्ट मूजिबि आला सतही इजलास में सदर ट्रंप खे सिफारती कोशिशनि सां गॾु ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर ट्रंप खे ईरानी ॿेटनि ते कब्ज़ो करण समेत शदीद फ़ौजी कार्रवाइयुनि बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रंप कंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रेक डाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खोराक खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मेट्रिक टन कणक गुम हुजण जी तस्दीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मेट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। खोराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़। वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं।

0: सिंध में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। नंदू में हारे नए आबादगारनि प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल कई। ठिकराटो में महर माइनर जे आबादगारनि पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। अठहठि मोरीअ जे आबादगारनि जाम लगारी शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। पोछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। चोहड़ जमाली वेझो ॿिनि धुरियुनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ गुल मोहम्मद छरेजो में छरेजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। जवाबदारम गुलाम नबी खे लतूं मुकूं हणी क़तल कयो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरियुनि में छिकताण वधी वई। सांगड़ में पुलिस लाक में फोत थियल बे ISP जी डिवाइस होल्डर जे वारसन जो लाश रखी धरणो। पुलिस ते अब्दुल्ला लांडर खे तशद्दुद करण मारण जो इल्ज़ाम। ज़िम्मेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस चयो आहे त अब्दुल्ला लांडर दिल बीहण सबब फोत थियो आहे।
1: Alcateia, se liga só nesse short 2 em 1, ele é...
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सिंध के माथे का झूमर,
3: DFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

تب الی من حبل الورید وطن آوین داس ماں

जनी जाथरन में वरथा वेण सहल ऊजे हक भंजल से सचू की सूमरा ओ जय सतिय सत न छदियो उहा मारुई मर जाई अचे उमर कोट में जहलोई न लजाई जा सागल सदाई उहा मारन म

0: जड़ी आयस जीअं शल पहिरी वञा तन ॾे लालाईअ जो लतीफ चए कर मुदन उठा मींह माड़ीअ लॻुम मेरो सभ जमा दर सीह खेस सायारी कांध जी हुतां अचे तीअं कंध खणंदसि कीअं अॻियां मन मारूं अड़नि जे
1: مستقیم

0: करते थे जहाँ पे वो रहते थे। तो जो एग्रीकल्चर की जो टूरिज्म है इसमें जब हम फार्म स्टे की बात करते हैं, फार्मर की टूरिज्म की बात करते हैं, रूरल टूरिज्म की बात करते हैं, तो ये वो टूरिज्म है जिससे एक यूनिफॉर्म किस्म जो है इनकम जनरेट या यूनिफॉर्म किस्म की जो है टूरिस्ट वहाँ पे आता है, जिससे कि हम किसी तरह की माहौलियाती आलूदगी और बाकी किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम है उनको जो है ना मिनिमाइज, बल्कि वो बिल्कुल होते ही नहीं है उस तरह के। तो ये किसी भी इलाके की जो जिस तरह हम रूरल आज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, देहाती जो है ना इस तरह की सेटअप में लोगों का आना वहाँ पे आके ठहरना, ये ना सिर्फ उस इलाके की जो है ना डेवलपमेंट में मददगार साबित होता है, बल्कि इससे जो बहुत सा प्रेशर जो हम शिमाली इलाका जहाँ पे हमारा पड़ जाता है वो भी काफी हद तक जो है वो कम हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हम अपने गांव हमारे चूंकि बहुत खूबसूरत हैं और गांव के कोई खाना भी एक बड़ा खूबसूरत है, तो हम अब रूरल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे बड़ा टूर है वो रूरल टूरिज्म है और एग्री टूरिज्म है, और यही दोनों ऐसे आइडिया हैं जो एक सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रेजेंट करते हैं।
1: जी तारिक तनवीर साहब, अब हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं क्योंकि बहुत सारे इस वक्त हमें हमारे किसान भाई भी सुन रहे हैं, बहुत सारे किसान भी हमें सुन रहे होते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि जो एग्री टूरिज्म है वो किसानों की आमदनी बढ़ाने में किस तरीके से मदद कर सकता है, क्योंकि फार्म ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन, फार्म विजिट्स और बराह रास्त मार्केटिंग से किसानों को आप हमें बताइए कि क्या क्या फ़वाद हासिल हो सकते हैं।
0: जैसे एग्री टूरिज्म जो है ये बेसिकली किसान को जो है ना नए आइडियाज, नई सोच देता है। जिस तरह आप देखें, हम शहरों में देखते हैं कि एक चाय का छोटा सा जो ढाबा बना होता है या पान का एक छोटी सी शॉप होती है, उसका भी एक नाम होता है, उसका एक ब्रांड होता है, उसका नाम रखा जाता है, लोग उसको उस नाम से ही जानते हैं। तो जो किसान है उसने अपने फार्म का कभी भी नाम नहीं रखा, उसको नहीं पता कि मैंने अपने फार्म को ब्रांड करना है, मैंने अपने फार्म का नाम रखना है और मेरे अपने फार्म के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ जिस पे लिखा हुआ कि मैं ये चीजें उगाता हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये नंबर है, इसको अगर कोई ये चीज चाहिए तो मेरे इस नंबर पे रابطہ कर सकता है। तो ये किसी भी फार्मर ने नहीं किया। तो एग्री टूरिज्म में सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो फार्मर की ब्रांडिंग करते हैं और फार्म की ब्रांडिंग करते हैं, यानी फार्म का एक नाम होता है और फार्मर जो है अपने नाम की पहचान के साथ अपनी चीजें जो है ना वो बेचता है। और सेकंडली हम उसको वैल्यू एडिशन पे जो है उसको ट्रेनिंग देते हैं, जो उसको प्रोग्राम देते हैं कि आपने जो रॉ मटेरियल में अगर जब देखिए जब भी किसान की प्रोड्यूस मार्केट में आती है तो उस टाइम में चीजें इतनी चीप होती हैं, इतनी वो सस्ती होती हैं, किसान को उसका बेहतर मुआवजा नहीं मिलता। तो ऐसे में वो अगर वो वैल्यू एडिशन करता है, अपनी चीजों को बेहतर ब्रांडिंग करता है, उसकी बेहतर पैकेजिंग करता है, उससे कोई प्रोडक्ट बना के बेचता है, तो उससे वो कई मल्टी टाइम ज्यादा पैसे जो है ना वो कमा सकता है। जैसे अगर मैं मिसाल दूं कि अगर हमारे पास किसी टाइम में कोई सब्जी ऐसी, जैसे आप गोभी की बात कर लेते हैं, अगर हम पुली की बात कर लेते हैं, वो जब वो 2-4-5-10 रुपए पर केजी तक सेल हो रही होती है, फार्मर की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में अगर जिस तरह हमारी दादियां परदादियां घरों में अचार बना लेती थी, जैम बनाती थी, मुख्तलिफ इस तरह के वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाती थी, तो वही काम आज किसान की जो बीवी है, जो किसान की बेटी है, उसने भी यही काम करना है कि अपने वालद अपने शौहर की उगाई हुई जो प्रोडक्ट है उसको उसने वैल्यू एडिशन में लेके जाना है और उसका एक प्रोडक्ट बनानी है, उसके ऊपर अपना नाम लिखना है, फिर शहर के लोगों को बेचना है। आज भी उस तरह का अचार जो है, मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो है ना इंडस्ट्री नहीं बना पाती। तो ये जो वैल्यू एडिशन है ये हमारी सेकंड जो है वो प्रायोरिटी होती है, और इसके बाद हम फार्मर को सिखाते हैं कि आपने अपने फार्म के ऊपर लोगों को बुलाना है, वहाँ पे उनको एंटरटेन थोड़ी सी दिखानी है और उनको टेंशन फ्री टाइम गुजारने का मौका फराहम करना है। ये वो 2-3 चीजें हैं जिसको अडॉप्ट करके हमारा जो किसान है वो अपने फार्म की इनकम जो है वो बेहतर कर रहा है।
1: ओके जी तारिक तनवीर साहब, आप हमें ये भी बताइए कि जितने भी अगर मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर आते हैं टूरिज्म के लिए, और जितने भी हमारे किसान भाई हैं, चूंकि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है और वो कोई मतलब के किसानों से अगर रابطہ करना चाहे, तो कोई सोशल मीडिया पेजेस या फिर कुछ इस तरीके से कोई मतलब जिनसे वो किसानों को रीच आउट कर सके, तो इस तरीके की कोई चीज़ अगर आप बताना चाहें।
0: देखिए बिल्कुल, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान एक ब्रिज का काम करती है, हम एक पुल का किरदार अदा करते हैं। अभी आप पूरी दुनिया में जाते हैं, अगर आप स्ट्रॉबेरी पिकिंग पे आप फार्म पे जा रहे हैं, आप एप्पल पिकिंग पे जा रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए फार्म के ऊपर आप जाते हैं, तो पाकिस्तान में भी हमारे पास सैकड़ों के साथ ऐसे फार्म अब डेवलप हो चुके हैं। हमारे किसान जो है वो अपनी प्रोडक्ट बना के बैठे हैं, मुख्तलिफ हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के किसानों को इसमें करें, तो जो हमारा एग्रीटूरिज्म का जो हमारा प्लेटफॉर्म है एक ब्रिज का काम करता है। हमारी साइड पे जितने भी किसान है उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया पेजेस बनाए हुए हैं, और जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वहाँ हम डिफरेंट फेस्टिवल्स कराते हैं, डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप करते हैं। हमारे एक साल में तकरीबन 100 फेस्टिवल जो होते हैं, कभी आप बनाना फेस्टिवल कर रहे हैं, कभी मैंगो फेस्टिवल कर रहे हैं, कभी ओलो मेला हो रहा है, कभी जतूर मेला होता है, कभी गुड़ फेस्टिवल हो रहा है। तो ये सारे मेले जो होते हैं ये किसान वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं हमारे मेलों के अंदर आते हैं, फिर उनकी डायरेक्ट वो डेवलप होती है और उनके फार्म को भी विजिट करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो हमारे साथ किसान भी जुड़ते हैं और आम जो टूरिस्ट जो एग्री टूरिज्म में जाना चाहता है वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम दोनों को आपस में जो है रब्ता करा देते हैं दोनों को आपस में।
1: ओके जी, अच्छा अगर हम जनरेशन की बात करें और जितनी भी हमारी खवातीन हैं उनकी बात करें, तो खवातीन और नौजवान एग्री टूरिज्म में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं, एक तो चीज़ आप हमें ये बताइए, और जितनी भी हमारी देही खवातीन हैं जो होम फूड्स बनाती हैं, दस्तकारी करती हैं, नर्सरी करती हैं, फूड प्रोसेसिंग करती हैं, और जितनी भी नौजवान हैं,
0: जी बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने ये शुरू की है। इसको मैं समझता हूँ कि किसान जो है वो शायद उस तरह जिस तरह आप बातें करते हैं वो उस तरह इसमें कोलैबोरेट नहीं कर पाएगा, या उस तरह उसको अंडरस्टैंड करना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ग्रो करना एक काम है और उसको प्रोसेस करके मंडी तक लेके जाना या किसानों घरों तक डायरेक्ट जो लोगों को बेचना ये दूसरी बात होती है। तो मेरा ख्याल है, हेलो आवाज आ रही है?
1: जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है,
0: मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग?
1: बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज।
0: तो सर चले बेहतरीन। अच्छा मैं यही कह रहा था कि जो हमारे लिख गए हैं जो यूनिवर्सिटियों में उन्होंने डिग्रियां ले ली हुई हैं, तो वो जब वापस जाते हैं गांव में तो उनको चाहिए जाके कि वो अपने पेरेंट्स के लिए एक स्पोर्ट का काम करें, और वो जो बच्चियां हैं या खवातीन हैं वो घर में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जिसको हम घरेलू इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो है ना इस तरह की बनाने की पैकिंग की इंडस्ट्री बनाए, और ई कॉमर्स जो है इसके जरिए आजकल देखिए जो मोबाइल है आजकल हर बंदे के हाथ में है, सोशल मीडिया हर बंदे के हाथ में है, तो हमारे बच्चे उसको बहुत हमारी यूथ जो है उसको समझती है, तो अपनी बाप की अपने भाई की और अपने शौहर की पैदा की हुई चीजों को उसको बेहतरीन तरीके से ब्रांडिंग करके उसको ई कॉमर्स के जरिए पूरी पाकिस्तान में उसको बेचे, तो शहर के लोग भी आज अच्छा चीजें जो है ना वो डायरेक्टली, जैसे अभी मैं मैंगो की बात करूँ, इससे ज्यादा हमारे देश भर किसानों ने ऑनलाइन मैंगो बेचना शुरू किया, जामुन ऑनलाइन बेचने शुरू की, ऑलिव के प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने शुरू किए, तो ये नौजवानों का काम था जो कि आईटी में भी एक्सपर्ट थे और उनका तलक भी जो है ना एग्रीकल्चर से था, तो उन्होंने ये मैं समझता हूँ किसान के जो ये जो नौजवान बच्चे हैं और उनकी खवातीन है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर में बैठ के अपनी उगाई हुई चीजों का, जैसे मल्टीग्रेन आटा है, आज भी शहर में जो आटा मिलता है वो सूजी और उसमें से निकली होती है, उसमें से जो हमारा मैदा निकला होता है वो इतना कोई सेहतमंद आटा नहीं होता, तो अगर किसान के बच्चे जो है उसको एक अच्छा आटा बनाए, होल वेट आटा उसको कह सकते हैं, या पत्थर की चक्की का आटा कह सकते हैं, या मल्टीग्रेन आटे का नाम दे के उसको 5 किलो की अच्छी पैकिंग के साथ पूरे पाकिस्तान में उसको बेच सकते हैं, तो ये खवातीन घर में बैठ के उसको वैल्यूडेशन करे और जो नौजवान है उसको एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ बेचे, और फिर जो शहर के टूरिस्ट है वो जब फार्म पे आते हैं तो ये जो नौजवान है ये उनको अपने साथ खेतों की सैर करें, टूर गाइडिंग करें, तो वहां पे नाइट स्टे के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स करें, तो इस तरह जब शहरों से लोग गांव में आते हैं पैसा खर्च करके जाते हैं तो गांव की सतह पर जो प्रॉस्पेरिटी आती है इससे खुशहाली आती है, क्योंकि इससे डायरेक्ट पैसा गांव में इंजेक्ट होता है और इसका बेनिफिशियरी जो होता है वो फार्मर होता है, उसके बच्चे होते हैं और उसके घर वाले जो बीवी बच्चे सब तक वो इक्वली उसकी प्रॉस्पेरिटी के जो साथ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि खवातीन को इंपावर करने के लिए और यूथ को नए आइडियाज देने के लिए बेहतरीन इस टाइम मौका है कि हम एग्रीटूरिज्म के मॉडल को अपनाएं।
1: ओके जी तारिक तनवीर साहब, टाइम भी बहुत लिमिटेड है हमारे पास, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर में आप पाकिस्तान के नौजवानों, किसानों और खवातीन मतलब के उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरीके से वो सरमायाकारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो आइंदा 5 से 10 साल के लिए आपका विजन क्या है उस पर भी थोड़ी सी नजर डालिएगा।
0: देखिए एक चीज, अब हमारी सारी बातें खैर अभी चूंकि टाइम बड़ा थोड़ा है, आप हमारी जो एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की आप अनाउंस कीजिएगा, हमारी जो सोशल मीडिया पेज भी है, फेसबुक पेज है, वहाँ पे हमारी पोस्ट आती रहती हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज पे बात होती है, उस पर मसाइल पे बात होती है, फिर वसाइल पे बात होती है, उस पर हम पॉलिसी मेकिंग पे बात करते हैं, उस पर किस तरह आइडियाज के ऊपर बात होती है, तो उसको पेज को विजिट किया जा सकता है। तो मुख्तसर मैं यही कहूंगा कि जो हमारा ज़राअत का जो मुस्तकबिल है वो वैल्यू एडिशन है। और चूंकि अब हमने ज़राअत में चीजें उगा के देखनी कि अब हमारा जो आलू पिछले साल देखे वो हमने वो ज्यादा पैदा किया तो वो भी रुल गया, किसान को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह प्याज है, बाकी चीजें हैं, 2 साल पहले हमारी गंदम के साथ भी यही हुआ। तो मेरा ख्याल है कि आने वाला जो फ्यूचर 10-15-20 सालों का है वो वैल्यू एडिशन है, कि हमने प्रोसेस करके हमने अपनी चीजों को पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है। तो मेरा पैगाम भी यही है, पॉलिसी मेकिंग के लिए भी यही है, और अपॉर्चुनिटी भी यही है मुस्तकबल की, कि अब वैल्यू एडिशन की एग्रीकल्चर का जो मुस्तकबल है, हमारे नौजवानों को वैल्यू एडिशन की एग्रीकल्चर पे सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि हमारे जो खवातीन है वो किसी से कम नहीं है, वो आगे आए और अपने अपने अच्छे जबरदस्त किस्म के अपने एग्रीकल्चर ब्रांड बनाए, प्रोडक्ट की ब्रांड बनाए, और उसको मोबाइल के जरिए, इस सोशल मीडिया के जरिए इसको, इस पावर को इस्तेमाल करते उसको बेचे। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के जो डिफरेंट जहाँ फेस्टिवल करते हैं कनेक्टिविटीज में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को ट्रेनिंग दे कि किस तरह आपने अपने प्रोड्यूस जो है ना वो बेचनी है। तो मेरा ख्याल है कि इस तमाम आइडियाज को हम अगर अडॉप्ट कर ले तो हमारा किसान जो है वो भी खुशहाल हो जाएगा, और रूरल जो डेवलपमेंट है जो हमारी सबसे बड़ा गोल है कि हमने देहातों की सतह पर हमने प्रॉस्पेरिटी लेके आनी है, तो वो भी गोल पूरा होगा। चूंकि किसान हमारी पाकिस्तान का 70% लोग हैं, अगर ये 70% लोगों को हमने खुशहाल कर लिया तो पाकिस्तान जो है ना वो भी खुशहाल हो जाएगा।
1: बिल्कुल जी, ऐसे ही बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया तारिक तनवीर साहब। अच्छा, जिन पेजेस की आप बात कर रहे हैं अगर उन पेजेस का नाम लेके आप बता देंगे तो सुनने वालों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी रीच आउट करने के लिए।
0: इसमें देखिए एक तो इसी नाम से एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक सोशल मीडिया का पेज है, इस पे अभी तक हमारी कोई मेरी को 50,000 जो है ना इसके ऊपर मेरी पोस्टें पड़ी हुई हैं। और इसमें अगर आप देखिए हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं पूरे साल में एक कैलेंडर बना होता है कि जो कौन से इलाके में कौन सा इवेंट होना है वो भी सारा इसी के ऊपर पड़ा होता है। तो एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान ये हमारी सोशल मीडिया पेज है, और www.atdcp.com ये हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर बेशुमार किसानों ने अपने ये जो है ना अपने अकाउंट बनाए हुए हैं, और लेने वाले और देने वाले को जो ब्रिज का काम करते हैं इसी साइट के जरिए करते हैं, उससे भी वो हमसे रब्ता कर सकते हैं।
1: ओके जी, थैंक यू सो मच मिस्टर तारिक तनवीर साहब, आप हमारे साथ रहे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन द शो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान। और आई होप जुगी जी आज का सेगमेंट भी आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी के साथ सेगमेंट का जो टाइम है वो यहीं पे खत्म होता है, हम लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
2: ये मासर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब
2: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
1: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
2: فقیری انالجیسک کریم, درد, سوجن, ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
3: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
4: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
1: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
4: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ.

GAFM 88 Network सिंध की आवाज खुशखबरी खुशखबरी अवां जे बारन जे बेहतरीन करियर आए रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आए मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आए फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन

0: Okay, next, last lucky caller. Hello.
1: Hello.
0: Hello, assalamu alaikum.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Ji, main theek hoon. Kaun baat kar rahe hain? Okay, ji, ye call bhi drop ho gayi. Very bad. Ek aur try karte hain. Ji, hello.
2: Hello, assalamu alaikum.
0: Waalaikum assalam. Dua kawal. कॉल क्यों नहीं करती?
2: क्यों नहीं करती?
0: रिसीव क्यों नहीं करती? रिसीव कर ली ना. अभी की है ना, क्या करे. अच्छा, लास्ट लकी कॉलर है दुआ कवल. आज आप तो हमें कोई अच्छी सी बात बता दें जल्दी से.
2: वो काम कभी भी मत किया करे जिसमें अपना फायदा दूसरों का नुकसान.
0: ठीक है. अच्छा, और वो काम जिसमें हमारा भी नुकसान हो और सामने वाले का फायदा हो, तो फिर
2: हाँ वो करना चाहिए.
0: वो करना चाहिए.
2: हाँ.
0: मतलब अपना नुकसान आउट ऑफ द वे जाके हम दूसरों के लिए कर दें.
2: वो काम मत करें जिसमें अपना फायदा दूसरों का नुकसान.
0: ये भी अच्छी
2: बात. वो काम करें जिसमें अपना फायदा दूसरों का फायदा.
0: नहीं, ये तो हो गया. ये बताएं जिसमें हमारा फायदा नहीं, हमारा नुकसान और सामने वाले का फायदा हो, तो उसमें क्या किया जाए?
2: उसमें क्या किया जाए?
0: Yes.
2: उसमें का फायदा बेहतर है.
0: दूसरों का फायदा बेहतर है. पक्की बात है? चलें, ठीक है. बहुत जबरदस्त, इतना बड़ा दिल लेके घूम रही है आप. वाह. ओके ओके, दुआ कवल, और कुछ कहना है?
2: हाँ, एक बात कुछ
0: सॉरी.
2: अच्छा, अगर मैं तुम्हारी पिछले शो की रिपोर्ट सुनना चाहूँ तो मुझे कहाँ सुनूंगी?
0: क्या सुनना चाहो?
2: पिछले शो आपके कितने?
0: पिछले शो सुनना चाहो, मेरे ख्याल से फेसबुक पेज पे अगर तो अवेलेबल है. अगर नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होंगे क्योंकि हमारा पेज कुछ टाइम पहले जो है आई गेस के फ्रीज हो गया था, जिसकी वजह से जो पुरानी ऑडियो स्ट्रीमिंग्स हैं वो शायद चली गई हैं. और मे भी कुछ हो, अगर आप सर्च करेंगी ना फेसबुक के ऊपर #RJRukhsar या फिर गूगल के ऊपर ही अगर आप सर्च करेंगी ना, तो आपको वहाँ पे मेरे शोज मिल जाएंगे. यस, RJRukhsar अब्बासी या फिर RJRukhsar #hashtag के नाम से सर्च करेंगे फेसबुक पे, गूगल पे, वट एवर, जहाँ भी करेंगे आपको वहाँ पे शोज मिल जाएंगे इजीली.
2: ओके,
0: ठीक है. ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू. और यहीं पे प्रोग्राम को खत्म करने का टाइम होता है जी. और

एक ही गाना चली जा रहा है, चेंज करेंगे और साथ में हम लेंगे फाइनली आपसे इजाजत। मेरी आपसे चिट-चैट होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे को, सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे, सुनना मत भूलिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज़।

0: ईरानी फौज जो खातम अलबिया हेडक्वार्टर जी तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकार आपने हरमुज ईरान जी रेड लाइन है अमेरिका के मुदाखलत कर डींदी ट्रंप के धमकिन से अमल किया वो ईरान के बुनियादी ढांचे के निशानो बनाया वो तो खिते के बचल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहो ईरानी फौज जो जवाब बराबरी वो न पर घो वो हों अमेरिका ईरान जा एक बे हमला जारी अमेरिकी फौज आ ईरान के मुख्तलिफ शहर से फिजाई हमला ईरानी शहर सेमनान में हवाई अड्डे के भी निशानो बनाया वो सेनेट का मूजिब अमेरिकी फौज अपने हरमुज में खतरो बढ़जंदड़ ईरानी
1: We had tasks in one app, docs in another, meetings somewhere else. It was complete chaos. Then we moved everything to ClickUp. And when we turned
0: फौज उर्दन हम बहरीन कोवैत में मौजूद अमेरिकी फिजाई अड्डन के निशानो बनाया उर्दन अठ ईरानी मिजाइल फिजा में तबाह करने की तस्दीक कर छी पाकिस्तान एक भेरो बीहर अमेरिका ईरान में बनाया है ईरान जाबे खिते में मौजूद अमेरिकी अड्डन से ड्रोन मिजाइल हमला ईरानी फौज उर्दन हम बहरीन कोवैत में मौजूद अमेरिकी फिजाई अड्डन के निशानो बनाया उर्दन अठ ईरानी मिजाइल फिजा में तबाह करने की तस्दीक कर छी

अमेरिका ईरान में मोकलण ते गौर शुरू करे छॾियो आहे। अपना हर्मस भरिसां ईरानी बेटनि ते अमेरिकी फ़ौजी मोकिलण जो इम्कान। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि आला सतही इजलास में सदर ट्रंप खे सिफारती कोशिशुनि सां गॾु ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर ट्रंप खे ईरानी बेटनि ते क़ब्ज़ो करण समेत शदीद फ़ौजी कार्रवाइयुनि बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रंप कंदो।

भले वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जी हिदायत। सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खुराक खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मैट्रिक टन कणक गुम हुजण जी तस्दीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। खुराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़। वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं। सिंध में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। नंदू में हारियुनि ऐं आबादगारनि प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल कई। ठिकराटो में महर माइनर जे आबादगारनि पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। अठहठि मोरी जे आबादगारनि जाम लगारी शाख में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। पोछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। चोहर जमाली वेझो ॿिनि धुरियुनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ गुल मोहम्मद छेर जो में छेर जा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। जवाबदार ग़ुलाम नबी खे लतूं मुखूं हणी क़तल कयो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरियुनि में छिकताण वधी वई। ॻोठ में ख़ौफ़ पखेड़ियल। सांगड़ में पुलिस लाक में फोत थियल BISP जे डिवाइस होल्डर जे जो लाश रखी धरणो। पुलिस अब्दुल्ला करे त अब्दुल्ला दिलहण सबब फोत थियो आहे। मटियारीअ में बंद पयल घर मां करोड़े रुपयनि जी चोरी। पुलिस पहुची जाइज़ो वरितो। चोर इनायतुल्ला मेमण जे घर मां 30 तोला सोना, ज़ेवर, 1,00,000 रुपया रोक ऐं ॿियो सामान खणी विया। इतला ते पुलिस वाके वारी हंधि पहुची जाइज़ो वरितो। वाके जो केस दाख़िल न थियो। मुतासिर इनायत मेमण जो चवण आहे त ज़ाल कैंसर जी मरीज़ आहे। हैदराबाद इस्पताल में दाख़िल हुआसीं। घर बंद पयल हो। राति पुट घर आयो त घर जी अलमारी जा ताला टुटल ऐं सामान विखरियल हो। 30 तोला सोन ऐं रक़म गुम आहे। सखर जे सेंटर जेल में क़ैदी मुबैना तौर फाहो खाई आपघात करे छॾियो। 24 वरियनि जे क़ैदी दिनेश कुमार जेल इस्पताल जे वॉशरूम में अगट सां फाहो खाधो। जेल इंतिज़ामिया जो चवण आहे त आपघात कंदड़ क़ैदी खे शराब जे केस में जेल मुंतकिल कयो वियो हो। वारसनि लाश जो पोस्टमार्टम कराइण खां इनकार करे छॾियो आहे। सजावल जुणे जो भरिसां आरज़ी भुट्टो शहर जे सिहत मर्कज़ में डॉक्टरनि ऐं दवाउनि जे खोट ख़िलाफ़ शहरनि जो मुज़ाहिरो ऐं धरणो। शहरनि मीरू खान चौक खां रैली कढी सिहत मर्कज़ ताईं मार्च कयो। सिहत मर्कज़ मां डॉक्टर जी खोट ख़तमु करणु ऐं दवाउनि समेत ॿियूं सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो।

पुरानी चौक ते पैसन जी लेती लेती ता शेख बिरादरी दे बिन दुरिन में झेड़ो एक बे ते लठन मुकन ए लतन जो वसकारो फायरिंग सबब खौफ पकड़ जी वयो पुलिस झेड़ींदड़ दुरिन जे बिनी

0: चालीह जरेबन ते पोखियल बिजारो बि वेलाए छॾियो आहे। जवाबदारनि ख़िलाफ़ कारवाई करे इंसाफ़ कयो वञे। ऐं अठ अठ मोरीअ में विरोही धुरियुनि में ज़मीन जे तकरार तां जेड़े जो जरगो धुरियुनि ते 85 लख रुपया ॾंड। लाल मोहम्मद विरोही ऐं खैर मोहम्मद विरोही धुरियुनि में 25 सालनि खां हलंदड़ तकरार ऐं जेड़े जो जरगो थियो। फ़ैसिलो ज़िले चेयरमैन अली अकबर जमाली ऐं ॿियनि जी सरपंची हेठि थियो। फ़ैसिले में 10 ॼणनि जे ज़ख़्मी थियण जो ॿिन्ही धुरियुनि ते मजमूई तौरु 85 लख रुपया ॾंड विधो वियो। धुरियुनि ॾंड जी रक़म ॿिन्ही महीननि अंदरि फ़ैसिले जे अमीननि वटि जमा कराईंदियूं।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

मीटर पूरी पूरी 3 बजे तक, तो बिल्कुल 2 घंटे हमारे पास मौजूद है जनाब, और 2 घंटों में हम इतनी सारी आप लोगों के साथ बातें करने वाले हैं। तो चलिए जी, बातों के पंडार को जरा खोलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाले गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला, बिकॉज आली रे आली सिद्राली बोस आपके होंठों पर 440 रुपए की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 रुपए की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, और जो आगा से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत से कलाम के साथ, बहुत प्यारा खूबसूरत कलाम जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो हम सुनते हैं उसके बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से इस्तेमाल करते हैं और खूबसूरत होते हैं।

0: ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा सुंदर. उसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावे. और जी आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे. और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ अगर मौजूद है तो आप कहाँ कहाँ से हमारे साथ हैं और कौन कौन से समाते हैं, ये हमारे साथ जरा आप शेयर करने वाले हैं. इसी के साथ साथ हम आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इनके बारे में भी तफसील से बताने वाले हैं. ओके जी, तो सब कुछ बताएंगे और बहुत सारी बातें हैं जो बताने वाली, लेकिन साथ साथ सबसे पहली जो बात है वो ये कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से टॉपिक क्या पूछा जा रहा है उसकी जानिब आ जाते हैं. ओके जी, तो अगर आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आज जो मेरा आप लोगों से टॉपिक होने वाला है प्रोग्राम के अंदर, तो वो कुछ इस तरह से होने वाला है जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, हम मूवीज में देखते हैं. मैंने रियल लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी इंसान की जो ना किसी इंसान को मेमोरी लॉस हो गया, यानी कि उसकी याददाश्त चली गई हो, उसने सब कुछ भूल दिया, उसका मतलब जो भी उसके साथ हो वो सब कुछ भूल जा रहा हो. मैंने रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ मूवीज में हमने बहुत मार देखा. लेकिन ऐसा है कि अगर आप जो है ना, आपने कभी किसी इंसान को देखा है जिसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, या फिर आपने भी मूवीज में देखा है, लेकिन सवाल जो है वो कुछ ऐसी से रिलेटेड होने वाला है आज के प्रोग्राम का, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मेमोरी लॉस हो जाने के बाद एक इंसान सब कुछ भूल जाता है, यानी कि वो सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, तो आज आप मुझे जरा ये बताइए कि फिर वो अपनी लैंग्वेज कैसे जो है ना उसे याद रह जाती है. यानी कि बेसिकली देखा जाए तो वो तो अपनी लैंग्वेज भी भूल जाए ना, मतलब एक चीज नई से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करे ना, फिर उसे अपनी लैंग्वेज क्यों याद रहती है, लैंग्वेज कैसे याद रह सकती है, ये आप जरा आज मुझे बताएंगे. तो जल्दी जल्दी से अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8821 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो LRK 88.8 हमारा पेज है. ओके जी, तो फेसबुक पेज को आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा जो है ना वो पेज मिल जाएगा. उसके ऊपर आप जैसे ही आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. ओके जी, चलिए जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे बताइए आप हमारे साथ मौजूद है. और साथ साथ बताइए अगर किसी इंसान की ना मेमोरी लॉस हो जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है, तो फिर उसे अपनी लैंग्वेज कैसे याद रहती है और क्यों याद रहती है, ये बताइए जरा मुझे. ओके जी, सो अगर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं तो जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाइए, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए. उसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है. और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, चाहे वो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो उसके लिए आपने जो है ना वो डायल करना है 03-15-799-0595-89-90-595. ये नंबर उन लोगों के लिए है जो भाई ये कह रहे हैं कि भाजी हमारे एरिया में तो नहीं मिल रही व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट और हमारी एरिया में तो नहीं मिल रही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट. तो आप जो है ना इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे. तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और नंबर के ऊपर रابطہ करते रहिए. ओके जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को भी लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन कीजिए और उन्हें जरा पोस्ट शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि खूबसूरतियां आपको कैसे मिलने वाली है. आजकल देखा जाए तो हर कोई जो है ना वो परेशान है खूबसूरती को लेकर, लेकिन आपकी ये परेशानियां हम दूर कर देते हैं. तो बिल्कुल जी, मोहम्मद मीरा जकरानी भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं जेकब आबाद से, खुश आमदीद कहते हैं भाई जान. सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ मौजूद है, सरफराज सोलंगी आपको भी वेलकम करते हैं. दर्दी दिल आ चुकी है, हेलो, और कहते हैं चलो चंद आ गई. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, स्वीटी को वेलकम करते हैं. और फहीम शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मौला सलाम अदर, खुश आयो, सफर चाक चंगा भला. जी जी, सब कुछ आयो चाक चंगा भला. तां बुधाए की आयो, कहते हैं जो गानो बुधाए जो भला, बिल्कुल तां की गानो बुधराइना सी. और हिदायतुल्लाह अहमद आने कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, मैं आज गया हूँ, मैं अच गया हूँ. ओके जी, बिल्कुल आज फ्री होकर, क्योंकि संडे है तो आज ये सॉन्ग सुनाना साहिर अली बगा का पश्तो. चले चले बिल्कुल, सबकी फरमाइशें लगाएंगे और लेकिन गाने अच्छे अच्छे वाले बोलिएगा. और उसके अलावा दिलावर खान हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया. वासा भाई आ चुके हैं, हेलो वासा भाई, छाला ताने खुश आयो. ओके जी, यासीन खंड भी हमारे साथ मौजूद है शिकारपुर से। नियाज भुट्टो शो सुन रहे हैं, वेरी नाइस सॉन्ग। शमन अली मीराली का सुनाइएगा, बिल्कुल सुनाएंगे आपको। और मोहम्मद समान आ चुके हैं, वेलकम टू द शो। स्वीट बुआ जी आपको भी खुशियां मदीद करते हैं। और आबिद नौशीरो से हमारे साथ जी। फिरोज अली ब्रोही भी हमारे साथ खुश आमदीद करते हैं भाइयों। मिदड़ी आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम प्यारी, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक ठाक। और उसके अलावा दर्द दिल कहती है कि जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब दलील से नहीं, वक्त से मिलते हैं। वक्त खामोश रहकर भी सब कुछ वाज़े कर देता है, कौन मुखलिस था, कौन मतलबी, कौन नेमत बना और कौन सिर्फ एक आजमाइश। वक्त का इंसाफ सबसे मुनफरिद होता है, ना उसे गवाहों की जरूरत होती है ना दलीलों की, वो हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक जवाब दे देता है और उसी में असल हकीकत अश्कार हो जाती है। क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन। और आपको खुश आमदीद करते हैं जी। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से जो सवाल पूछ रहा है तो वो जरा दोबारा से रिपीट करते हैं। और सवाल मैंने आज आप लोगों से पूछा है कि आप मुझे बताएं, अगर एक इंसान की याददाश्त चली जाती है, एक इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है, उसके बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है, ये तो आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, तो आप मुझे ये बताइए तो उसे फिर अपनी जबान कैसे याद रह जाती है? वो भी देखा जाए तो उसे भूल देनी चाहिए थी, क्योंकि सब कुछ भूल जाता है तो जबान भी भूल देनी चाहिए। तो मुझे बताएं ये क्या सीरे भाई, ये क्या मैटर है, इसके ऊपर आप क्या कहने वाले हैं? जल्दी से बताइए, शामिल प्रोग्राम होते जाइए और हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। टाइम हुआ जाता है जी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करती रहिए।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: फातिह मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविदा
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
3: जी हाँ,
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश,
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: ये ऑइंटमेंट
3: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
4: दर्द, सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
4: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ,
4: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
3: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
4: और जल्दी जलन में मुफीद।
3: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी अपना जो है ना आप हमें एक तो 8881 पर मैसेज कर सकते हैं दूसरा आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं ठीक है। कॉमेंट करते रहिए और हमारे फेसबुक पेज को जो है ना वो फॉलो कीजिए उसके बाद पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। ओके हो गया जी बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताते हैं कि आप क्यों इस्तेमाल करेंगे जनाब क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो आप जानते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और ये कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं ये भी जानते हैं लेकिन आप क्यों इन्हें इस्तेमाल करेंगे ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी बात हो जाती है। तो बिल्कुल आपको बताते हैं कि अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स को या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को कैसे जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। तो खूबसूरती को बढ़ाना आजकल के दौर में भाई बहुत आसान काम हो चुका है क्योंकि इतने मजे मजे के प्रोडक्ट्स इतनी शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है तो आपकी तो चांदी ही चांदी है भाई सोना महंगा है ना इसलिए तो आपको गोरा चिट्टा बनाने का काम करेंगे जी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि आप लोगों को बताएंगे लेकिन जरा टॉपिक रिपीट करते हैं उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या पूछा गया है। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं आपने बहुत बार देखा होगा मूवीज में ड्रामों में हर जगह आपको ये पता है कि एक इंसान की यादाश्त चली जाती है ठीक है मेमोरी लॉस का तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मेमोरी लॉस हो जाने के बाद एक इंसान सब कुछ भूल जाता है ठीक है तो उसे अपनी जबान कैसे याद रह जाती है। ये तो एक मतलब वो बात हो गई ना कि भाई हमें वो बचपन से पागल बनाते आ रहे हैं कि मेमोरी लॉस होने के बाद तो इंसान देखा जाए बेसिकली सारी चीजें उसको भूल जानी चाहिए लेकिन वो अपनी जुबान कैसे याद रखता है ये जरा लॉजिक समझ नहीं आ रहा। तो इसको जरा ये डाउट है इसको क्लियर कीजिए और साथ बताइए जल्दी से कि आपका इसके ऊपर क्या जवाब होने वाला है। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में जल्दी से बताइए कौन कौन हमारे साथ है और कहां कहां से आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराने चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल करते रहिए 03-15-799-0595 बुढ़ी 315-79-90-595 ठीक हो गया। ओके जी हमारे साथ यहाँ पर किशोर भाई आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे दिमाग क्या दिमाग गया नहीं तो देखा जाए तो ये चीज थोड़ी सी सोचने वाली ना कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है निदड़ी कहती है ठीक नहीं थी ठीक हो गई अब क्या बात है जी बहुत शुक्रिया। और फहीम कहते हैं टॉपिक मेरे ख्याल से वो अपनी जबान भी भूल जाता है उसे इशारों से बातें सिखाई जाती है। अच्छा ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा। और इकबाल आचार्य हमारे साथ बोले सोनो खाल आचार्य मीरपुर खास से सुन रहे हैं भाई को वेलकम करते हैं। और यासीन कहते हैं लगता है आज आपका मूड सही है जी बिल्कुल अलहमदुल्ला। और हिदायतुल्लाह कहते हैं डिप्रेशन। और उसके अलावा सरफराज अली कहते हैं हमें जवाब नहीं आ रहा हमको नहीं पता। और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक ये तो जब मेरी मेमोरी लॉस होगी तभी पता चलेगा। नहीं आपने जो इतनी मूवीज इतने ड्रामे देखे हैं तो बताएं ना क्या सीखा हमसे। हाफिज यूनिस बाबर हमारे साथ हैं जी वालेकुम अस्सलाम सनाला बिरोही हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम ठीक हुए आप बताएं आप कैसे हैं। ओके जी तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे शो तो बिल्कुल कीजिए। साथ साथ अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो सर आप लोगों को बताते हैं कि जब आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे तो इस्तेमाल कर पाएंगे ना। तो अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है ये तो आप जानते हैं। तो बिल्कुल सी अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मिल रही है जो कि नाइट क्रीम है और उसके अलावा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम के साथ साथ आपको व्हाइट एज की लवली क्रीम मिल रही है जो कि फेयरनेस क्रीम है। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है अगर आप नाइट क्रीम लगाना पसंद करते हैं तो व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नाइट क्रीम में नहीं लगा पाते हैं आप लोगों की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है लेकिन आपको फेयरनेस फार्मूला चाहिए फेयरनेस
फाइनेस्ट क्रीम चाहिए तो आप व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाइट एश लवली क्रीम जो कि फेयरनेस फार्मूला है जिसे हर एक इंसान लगा सकता है, दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो सारे लोग व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो है ना वो उसे तैयार इस तरह से किया गया है कि भाई इसे हर कोई इंसान जो है वो लगा सकता है, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, टीनेजर्स हैं, लड़के लड़कियां, अंकल आंटियां सभी इस्तेमाल करेंगे। घर का एक एक इंसान व्हाइट एश लवली क्रीम को लगा सकता है क्योंकि जनाब ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स का फार्मूला है। 30 वाइटमिन्स कैप्सूल इसके अंदर ऐड किए गए हैं और मजे की बात कि इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है। ऐसा नहीं कि अब हम इस ये जो स्ट्रगल था मेरी लाइफ का ये मुझे ही पता है कि भाई मैंने कितनी बार कोशिश करा कि भाई मुझे मेरे टाइप का जो ना स्किन टाइप का सन ब्लॉक मिल जाए लेकिन कभी मिलता ही नहीं था। और ये जो चीज है हमारे पास अगर बनी बनाई चीज एक मिल जाए हमें जिससे बस हमने सिर्फ फायदा उठाना है तो आपके पास व्हाइट एज लवली क्रीम आ जाती है जिसके अंदर आपको सनब्लॉक की क्वालिटीज भी मिल रही हैं। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और आप इस्तेमाल करेंगे इसे किस तरह, जैसे आप कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाते हैं सुबह लगाएं जब आप किसी काम से जाएं, कोई काम है, आपका कोई जॉब करते हैं तो आपने बस अपना फेस वॉश करना है और व्हाइट एज लवली क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देने हैं। उसके अलावा अगर आपके चेहरे पर एक नहीं प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, आप टीनेजर हैं तो टीनेजर्स की स्किन पे काफी ज्यादा एक्नीज आ जाते हैं तो एक्नीज को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ये फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है, यानी कि इसे जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है और ये आपके एक्नीज को तो खत्म करेगा ही करेगा लेकिन उसके साथ साथ इसके और भी बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, जैसे कि आपके चेहरे पर जो एक्नी के निशानात है वो खत्म हो जाते हैं, आपके चेहरे पर अगर बहुत ज्यादा निशानात हैं या फिर जैसे आंखों के हल्के हैं या फिर रिंकल्स आ चुके हैं या फिर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इस तरह के कोई भी निशानात अगर आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है और आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करके उन्हें जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। लगाने के तरीकेकार भी बिल्कुल आसान है, जैसे आप जो है ना अपना फेस वॉश करते हैं। और हाँ, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना इसे आप दिन में भी लगाएंगे और रात में भी लगाएंगे, यानी कि आप सुबह में भी लगाइए और रात में भी लगाइए। जब आप सुबह उठें तो आप लगा लीजिए और जब आप सोने लगे तब भी आप लगा लीजिए, लेकिन लगाने से पहले अपना ना फेस वॉश लाजमी किया करें। उसके अलावा अगर आप कोई अच्छा सा साबुन ढूंढ रहे हैं, तलाश है अच्छे से साबुन की, तो आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद है। और व्हाइट एश ब्यूटी सोप जो है आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइट एश का ब्यूटी सोप जिसके अंदर एवका जो है, एलोवेरा है और मिल्क है। उसके अलावा अगर आप चलें सोप नहीं लगाते हैं, फेस वॉश लगाने वाले इंसान है, तो आपके पास व्हाइट एश का जो है ना फेस वॉश भी मौजूद है। ओके जी, तो व्हाइट एज का फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि विटामिन सी से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है। और उसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई भी मौजूद है। और मजे की बात बताऊं तो जनाब विटामिन सी वाला जो ये व्हाइट एज का फेस वॉश है ना, ये इतना क्रीमी फेस वॉश है कि जब आप इसे लगाएंगे तो आप कहेंगे आए हाय मजे ही आ गए। तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एज का फेस वॉश या फिर सोप, जो भी आपको इजी लगता है, जो भी चीज आप लगाना पसंद करते हैं, बस लगाते जाइए, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जाइए, हमेशा के लिए टिप टॉप बनी रहिए और साथ साथ डायल करती रहिए 03 15 799 0595। बुड़ी ट्रेस ओपन रहा 79 95 95 ही नंबर आए जो तमाजी आसानी से लाया है। अगर तुम पांजे करीबी जनरल स्टोर से व्हाइट एज तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराइन चाहियो था तो देन तमा के ही नंबर डायल करनो पंदो ए नंबर डायल करना खा पोई तमाजे करीबी जनरल स्टोर से व्हाइट एज तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेदा। सो अवेलेबल करायो ए पांजे लाए आसानी पैदा कयो, समझो ता पांजे लाए भी पांजे आसपास जे मानन जे लाए भी। ओके सो व्हाइट एज जो एतियो गाली वाइन जके तमा इस्तेमाल करना तो तुम्हें खबर पेजी वी के तवे बुधाईदा भी रहासी। और विलेज से गुलाम कासिम सोलंगी फ्राम हिंगूजा से दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सिद्रा कैसी है और शेला गुल का गाना सुनाइएगा और कहते हैं 8 दिन हो चुके हैं आज मुझे मुझ पर नहीं नहीं आज लास्ट टाइम आपका गाना मैंने चलाया था कुछ शायद 1-2 दिन हुए और चले मैं कोशिश करूंगी आज जो आपने गाने की फरमाइश करी लगाएंगे। डेडिकेशन आपकी जा रही है किसको, नजीर सोलंगी, आसिफ सोलंगी, सलीम एंड तैयब सोलंगी के नाम चले रही, बहुत शुक्रिया हो गया आपका। और फहद डेरी है सऊद डेरी फ्रॉम नवाबशाह सलामती शो नाई साई तमाम जो मोहब्बतों प्यारे भाज। और हमारे साथ है जी प्रिंस अहमद अली रिंद फ्रॉम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम कहते सलाम पाक आर्मी स्वीट शो, प्लीज दीबा सहर का कोई भी सॉन्ग अपनी पसंद का प्ले कीजिएगा। ओके डन। और हमारे साथ है जी ये दादू खान हैदरी फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंजूर जो हाजिर हाजिर हला।

अच्छा अच्छा था जो अदा जी वापस दुनिया में आई थी तुझी जुबान केड़ी हुई मुझी जुबान तो हुई पर मां कुछ गालाई थी कोनो हुए मुझे एतरो एटीट्यूड हुआ मां बिन सालन दाई इसा गालो ही कोनो हुए हाणी भी घट गालाईंदी आहे पर ॿिनि सालनि ताईं कंहिंसां ॻाल्हायो ई कोन हुयो ॾिसो त अलाई छोकिरी जी अच्छा मिठो सुमरो वारे साथ मिस्त्री फ्रॉम खानपुर महर से शो सुन रहा हूँ प्रोग्राम लशपश है और एंजॉय कर रही है आपकी आवाज को प्लीज फायजा अली का गाना सुनेगा दोस्त मुमताज अली सुमरो एंड फराज अली सुमरो सजाद अली सुमरो के नाम चले मैं बिल्कुल आपकी फरमाइश का गाना लगा दूँ और मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम हैदराबाद अच्छा हैदराबाद से आप हमारे शो सुन रहे हैं आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपको वेलकम करते हैं जी महामान जमान लगते हैं चाप

मामा जमान कह सकते हैं, शायद ऐसा हो सकता है। और फहीम से कहते हैं, जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं, वो मुद्दतें हुई हैं किसी से जुदा हुए लेकिन ये दिल की आग अभी तक बुझी नहीं। वाह वाह। अच्छा सरफराज अली सोलंगी भाई, हेलो हो गया जी आपका। यासिन खान कहते हैं कि शमन मिराली का गाना सुनाइएगा। जी जी मैं लगाने की कोशिश करती हूँ शमन का गाना। और उसके अलावा हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे साहिर का ये तो नहीं बोला था, वो मुझे थोड़ा ऑफ सा लगा इसलिए मैंने ये वाला लगा दिया। और निदिरी कहती है कि चापेक यादाश्त चली जाती है, जुबान तो वैसी की वैसी होती है ना, मुंह ठीक है तो जुबान भी ठीक ही हुई ना, जुबान का तो नहीं ना, जब सारी बातें सारी चीजें इंसान भूल जाता है तो उसे जुबान कैसे याद रहती है। ये भी तो है ना कि वो सडनली ऐसा हो जाए कि इंग्लिश बोलने लग जाए कि भाई क्या पता मैं इंग्लिश वाला बंदा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक इंसान सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, उसे कुछ भी याद ना हो लेकिन वो अपनी जुबान बखूबी भूल जाता है, तो ये जरा थोड़ी बात जो है ना वो हजम नहीं हो पाती। बताइए जरा आप क्या कहेंगे इसके ऊपर। और साथ साथ अगर आप वाइट एज प्यूरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करें तो कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए। ऐसा ना हो कि बातों बातों में आप ये चीज भूल ही जाएंगे भाई वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने हैं और हमने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है ये भी बताइए जल्दी से। अच्छा फहीम ये कौन सी मूवी देखी भाई, मुझे जरूर बताइएगा, मैं देखना चाहूंगी। और ये हमारे साथ हैं जी निधि, कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं इसीलिए कुछ भी बोल जाऊं तो इग्नोर कर देना। ओके अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, भाभी के साथ पक्की वाली दोस्ती बना लेते हैं, समझ रहे। और ये जी ए मंसारी कहते हैं टॉपिक पर, गजनी में आमिर खान ने दिखाया लोग कैसे भुलक्कड़ बनते हैं, फिर पीके में बताया कि जुबान सीखने के लिए किसका हाथ पकड़ के पूरी भाषा खुद में डाउनलोड कर देता है। अयो रे अयो। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उस तक पहुँचने का पूछ सकूं, दया क्या घन चक्करी, अगर उसने बताया तो यू को भी बता दूंगा। चलें ठीक है मैं वेट कर रही हूँ, आप मुझे जरूर बताइएगा। और दर्दी दिल कहती है कि जो शख्स आपको नीचा दिखाना चाहता है वो तस्लीम कर चुका है कि आप उसका मकाम नहीं, आपका मकाम उससे ऊंचा है। बिल्कुल जी ऐसा ही होता है। यासीन कहते हैं कि वाइट एज का सोप लेकर आया हूँ, क्या बात है जी क्या बात है, इस्तेमाल कीजिएगा। और वाइट एज की जो लवली क्रीम है ना वो भी आप ट्राई करके देखिए, वो बहुत अच्छी है, आपके घर में सभी को पसंद आ जाएगी। आपके घर में खवातीन जितनी भी है ना वो कहेंगी भाई ये आप दूसरी लेकर आए ये हमें दे दें बस, तो आप लाजमी जो है ना वाइट एज की लवली क्रीम जो है ना वो ट्राई करके देखिएगा।

आप ही आप बहुत अच्छा करती हैं, ड्रामे नहीं देखती हैं, मैं भी नहीं देखती हूँ. कभी कभी अरीबा जोई मुझे ड्रामा दिखाती है तो देखकर मुझे शायद आपको गुस्सा आता होगा. इसके बाद आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है. नहीं, पहले मैं बहुत देखती थी, लेकिन अब जरा मैंने खुद के ऊपर कंट्रोल लगाया कि ये सही नहीं है दया, तो थोड़ा अपनी जिंदगी में इंसान को सीरियस होना चाहिए.

नहीं तो नोवा तो वो गरीब गरीब जला नाइट है नो अंसारी लिखते हैं कि लेकिन लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो फितरतन मिली हुई है और फितरत इंसान में ऊपर से डाउनलोड होती है. अच्छा मनैया गाल हुई सही. भाई मैं सुन रही हूँ सक्रिन से खुश आमदी भाई जान. फहीम कहते हैं सावट ऑलरेडी अवेलेबल आए छोकरी जाई बुधा तो केड़ो प्रोडक्ट बतू थव.

जी सूरत में खिते जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करण जी धमकी दई छी। ईरानी फौज के खातमुल नबी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी चयो आहे त अब्न हरमुज ईरान की रेड लाइन है, अमेरिका के मुदाखलत करण न डींदासीं। ट्रंप के धमकिन ते अमल कयो वयो, ईरान के बुनियादी ढांचे के निशानो बणायो वयो त खिते के बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहंदो। ईरानी फौज जो जवाब बराबरी वारो न पर घणो वधीक वारो हूंदो। अमेरिका ईरान जा एक बे हमला जारी। अमेरिकी फौज जा ईरान के मुख्तलिफ शहर से फिजाई हमला। ईरानी शहर सेमलान में हवाई अड्डे के भी निशानो बणायो वयो। सेनेट काम मूजिब अमेरिकी फौज अब्न हरमुज में खतरो बणजंदड़ ईरानी सलाहियतन के निशानो बणायो आहे। ईरान जा बे खिते में मौजूद अमेरिकी अड्डन ते ड्रोन ए मिज़ाइल हमला। ईरानी फौज उर्दन बहरीन ए कुवैत में मौजूद अमेरिकी फिजाई अड्डन के निशानो बणायो। उर्दन 8 ईरानी मिज़ाइल फिजा में तबाह करण जी तस्दीक करे छॾी। पाकिस्तान एक भेरो बीहर अमेरिका ईरान में शुरू थियल चिकताण ते गणती जाहिर करे छी। धुरिन खां सहप ए सब्र जो मुजाहरो करण जो मुतालबो। मसलो गालिन जरिए हल करण ते जोर। परडेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरावी चयो आहे त खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते नज़र आहे। पाकिस्तान मसले जे हल लाइ गालिन ते यकीन रखे थो। तकरार कंहिंजे बि मुफ़ाद में नाहे। पाकिस्तान अमुन कोशिशनि तां हथ नाहे खयो। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहण घुर्जे। अमेरिका ईरान में ज़मीनी फौज मोकिलण ते गौर शुरू करे छॾियो। अमेरिका हरमुज भरिसां ईरानी बेटन ते अमेरिकी फौज जे मोकिलण जो इम्कान। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जे रिपोर्ट मूजिब आला सतही इजलास में सदर ट्रंप खे सिफारती कोशिशनि सां गॾु ईरान में ज़मीनी फौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर ट्रंप खे ईरानी बेटन ते कब्ज़ो करण समेत शदीद फौजी कार्रवाइयुनि बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ज़मीनी फौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रंप कंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार हिकु ॾींहं जे दौरे ते चीन रवानो। इसहाक़ डार शंघाई में चीनी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। खिते जी सूरतहाल ते

टन कणक गुम हुजण जी तस्दीक अमलदारन पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा खुराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़ वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं।

सिंध जे सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण मौलाना फजल रहमान खां शहीदन बाबत बयान वापस वठण जो मुतालबो करे छड्यो। शर्जील इनाम मेमण चयो त मौलाना फजल रहमान शहीदन बाबत दिनल बयान पांजो वापस वठे। बयान वापस वठण सां मौलाना फजल रहमान जी इज्जत घट न थींदी। मौलाना फजल रहमान मामले के अनाजो मसलो न बणाए शहीदन ऐं गाज़िन बाबत बयान जे सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियूं था। शहीद पाकिस्तान जो असासो ऐं असांजो फ़ख्रु आहिनि। बयानबाज़ीअ सां शहीदनि जे रुतबे खे को बि नुक़सान नथो पहुचे। सिंध में पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। नंदू में हारियुनि ऐं आबादगारनि प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल कई। ठिकराटो में महर माइनर जे आबादगारनि पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। अठहठि मोरीअ जे आबादगारनि जाम लगारी शाख में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। पोछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। चोहड़ जमाली वेझो ॿिनि धुरियुनि में मामूली ॻाल्हि तां जहिड़ो हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ गुल मोहम्मद छेरजो में छेरजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो थियो। जवाबदारनि ग़ुलाम नबी छेरजो खे लतूं मुकूं हणी क़तल कयो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरियुनि में छिकताण वधी वई। ॻोठ में ख़ौफ़ पखेड़ियल। कराची जी अदालत में फुर मज़ाहमत ते क़तल थियल डॉक्टर आकाश केस जी ॿुधणी। गिरफ़्तार जवाबदार सुरेश रामचंद ऐं अनिल अदालत में पेश। अदालत टिनी जवाबदारनि खे 7 ॾींहनि जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। जांच आफ़िसर मूजिबि जवाबदारनि ख़िलाफ़ शहर जे ॿियनि थाणनि में बि मुख़्तलिफ़ केस दाख़िल आहिनि। सांगड़ में पुलिस लॉकअप में फोत थियल BISP जे डिवाइस होल्डर जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। पुलिस ते अब्दुल्ला लांडर खे तशद्दुद करे मारण जो इल्ज़ाम। ज़िमेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस चयो आहे त अब्दुल्ला दिल बीहण सबबि फोत थियो आहे। सखर जे सेंटर जेल में क़ैदी मुबैना तौर फाहो खाई आबाद करे छॾियो। 24 वरियनि जे क़ैदी दिनेश कुमार जेल इस्पताल जे वॉशरूम में अगट सां फाहो खाई। जेल इंतिज़ामिया जो चवणु आहे त आबघात कंदड़ क़ैदीअ खे शराब जे केस में जेल मुंतकिल कयो वियो हो। वारसनि लाश जो पोस्टमार्टम करण खां इनकार करे छॾियो आहे।

सजावल जुने जो भरसा अर्जी भुट्टो शहर के सेहत मरकज में डॉक्टर ने दवाओं की खोट खिलाफ शहरन जो मुजाहरो धरणो शहरन मीरो खान चौक का रैली कढ़ी सेहत मरकज ताई मार्च कयो। सेहत मरकज मां डॉक्टर की खोट खत्म करने दवाओं समेत बी सहूलतू डेण जो मुतालबो।

ठुल भरसां ॻोठाणनि जो कारे जे कूड़े इल्ज़ाम हेठि ॻोठ ते मुबैना हमले ऐं फसुल जे भेल ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ गुल बेग नुनारी वासी जो चवणु आहे त कारे जो कूड़ो इल्ज़ाम लॻाए ॻोठ ते हमिलो कयो वियो। 40 जिरेबनि ते पोखियल विजारो बि भेलाए छॾियो। जवाबदारनि ख़िलाफ़ कारवाई करे इंसाफ़ कयो वञे।

0: मियां मार जे सामुंडी इलाइक़े में ॿ ॿेड़ियूं हादसे जो शिकार। ॿेड़ियुनि में सवार 500 ॼणनि जे फौत थियण जो ख़दशो। परॾेही मीडिया मूजिबि ॿई ॿेड़ियूं मियां मार जी रियासत राखिन मां रवानी थियूं हुयूं। ॿेड़ियुनि ते सवार माण्हुनि में अक्सरियत रोहिंग्या मुस्लमाननि जी हुई। ख़दशो आहे त ॿेड़ियुनि में सवार समूरा मुसाफ़िर फौत थी विया आहिनि। मुसाफ़िर ॿेड़ी हादसे जो शिकार थी विया आहिनि। ॿेड़ीअ में सवार समूरा मुसाफ़िर फौत थी विया आहिनि। इख़्तियारनि मूजिबि ॿेड़ीअ में 50 मुसाफ़िर सवार हुआ।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम।

पलुगी झोंगिर काईन इनु ही ऊचिए पलु चुबल में चाईन अला उते मन पुशाईन तहीर

ਰੋਟੀਆਂ ਹਰੀ ਅਨਸਾਂ ਜੇ ਰੋ न पुछन बियो भेरो ये कुर्बानी के रुथियो ओ पागल कदी तो दिया ओ हियो सारु हथन मनी खा विलायत में अग्यो अजीब ओ तेरी मान चवल कहिए कुर्बानी के रुथियो ओ भला ओ मिया।

0: ओके दी, तो डी स्किन का फेस वॉश अब मार्केट में अवेलेबल हो चुका है. आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं. बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं. आप ट्राई करके देखिएगा, आपको मजे आ जाएंगे जी. ऐसा फील होगा कि आप कोई बहुत ही महंगा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, लेकिन ये मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रहा है. तो लास्ट ट्राई करके देखिए. और इसी के साथ साथ आपका जो कॉलिंग वाला सेगमेंट है वो जरा हमें स्टार्ट कर दें. कॉलिंग सेगमेंट में आप लोग हमें जो है ना वो ज्वाइन करते जाएंगे, और इसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा कॉल्स भी करेंगे. और इसके अलावा आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0332132288. सो फर्स्ट कॉलर की जाने बातें देखें कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम
0: अस्सलाम. अलीजा, माशाल्लाह पहली कॉल है जो अलीजा जी लगी भैया. सो लकी. माशाल्लाह माशाल्लाह सुठी गाल आज. मतलब शुरुआती छोकरी जी कॉल सां थी, या मतलब लगे तो तेला इन छोकरी जो कॉल ही वेंदी हुई. ये ओके अलीजा, बुधायो छाला ताने खुश आयो.
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मां ठीक आया तो आप बुधायो.
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया. प्रोग्राम बुधो पिया.
1: जी जी रोजाना बुधना आयो.
0: टॉपिक थी अलीजा छा चवंदी.
1: टॉपिक तो कुछ नहीं चवामा.
0: चो भला.
1: खबर ना दिमाग में कौन घुसी है गल.
0: चलो मुझे ये बताया तो तुम केड़ो प्रोडक्ट लगायो पया.
1: अया कौन लगायो सिद्रा.
0: छो मीठो खास में ना कौन अवेलेबल थिया या तमा वठन कोन वया आयो.
1: अवेलेबल थी रे अंदा उनका पाव वही ना या छो तो गर्मी ज्यादा
0: है. चलो चलो ठीक है. बेओ बुधायो बेओ छा चवंदा.
1: जेके भी छोकरियों बुधन पे उनके सलाम निदा बुधे थी मुसा गड शो.
0: जी जी
1: गानो बुधराजो.
0: केड़ू निदा के नहीं सुआ ही बुधाए गानो केड़ो बुधन दी.
1: निदा भजी हुई गाने वा.
0: शर्मीली या कुछ ज्यादा ये ना. चलो चलो ठीक है. थैंक यू सो मच अलीजा, तुम प्रोग्राम में कॉल कई लाई सुठो लगन अलीजा संगाल है. ओके सो तमाम भी कॉल करी सगो दा. कॉलिंग नंबर आ है 0332132288. नेक्स्ट कॉल है दिसु केरा ससगर मौजूद है. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम बाजी.
0: केड़ो भाषा से गडा.
2: आरो भाषा आयाज अली भट्टो.
0: आयाज अली भट्टो किथा कॉल किया. लाड़कानी का आयाज दा खुश आयो.
2: हेलो ब्रदर, आता कुछ लगा था केरा.
0: मजे में प्रोग्राम बदो पे आयाज भा.
2: हां तो लगा दिए जूट क्रीम.
0: हां केड़ी बूटी क्रीम ता लगायो.
2: रोज बदलना हो बाजी चौका.
0: वाह वाह वाह वाह, केड़ी क्रीम हणी डिठी तव.
2: डीएस ब्यूटी क्रीम बाजी.
0: डीएस ओके ओके. डीएस ना वैसे डी स्किन नालो तस. ये न तो दुकान में वो मानो के जो डी स्किन जो तो
2: डॉक्टर
0: माई जो फोटो अस न. जी जी जी जी बिल्कुल बुधा था. कड़े दोस्त की याद कह. जी जी ओके. थैंक यू सो मच अयाज भा, तांचो मोहब्बत तां प्रोग्राम में कॉल कई. ओके जी कॉलिंग नंबर 0332132288. आप सुन रहे हैं जी व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम बाजी सिद्रा छाला.
0: अल्हम्दुलिल्लाह केरा से सगड़ा.
3: बाजी सिद्रा ता जसा पदनर हाथे सामल अमन दिले मोरो खा.
0: वाह वाह वाह वाह, मोरो वाला लिसनर माशाल्लाह एला एक्टिव आए ने ये ना.
3: जी जी बाजी सिद्रा ता जे रोग प्रोग्राम बदाय ता जे प्रोग्राम ना तो भालो आनंद आए.
0: नालो तो बदायो मुझे प्रोग्राम जो जेको डेली बदनायो.
3: व्हाइट एज
0: साबित करे छो मुझा वाकई रेगुलर लिसनर आयो. तां डेली प्रोग्राम बुधा अज जो प्रोग्राम बुधो था तो सवाल है तवा जो केड़ो जवाब आ. चलो मुखे बुधा तो कोई प्रोडक्ट लगाए तो जी बुधाया थी.
3: व्हाइट एच जी लवली क्रीम बस आज घराए दिनी आ.
0: जी चलो चलो ठीक है. बुधाए जो केड़न दोसन की याद कंदा.
3: हाथ विलख मेरा मत दिलो इच्छा मेरा मत दिलो ममतार लंडा पे कलाम बुधाए जे ममताज मलाई जो.
0: चलो ममताज मलाई हलाइंदासी तवा जे लाए. थैंक यू सो मच प्यारा भा प्रोग्राम में कॉल कई तव्हांजो मोहबतूं आहिनि तव्हां शौक़ सां प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो जंहिंजो नालो आहे वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो. अच्छा मूं छंछर ते कॉल न वरिती हुई न शायदि छंछर ते न वरिती खमस ते बि न वरिती हुई सो अॼु त वठणी हुई न मूंखे कुटकी थोरी खाइणी सम्झो था नी सो मतिलबु ईअं आहे त गालियूं लास्ट में वठणियूं हूंदियूं आहिनि सो कॉलिंग नंबर आहे 0332132128. नेक्स्ट कॉल ॾिसूं था केरु असां सां कॉलर मौजूदु आहे. हैलो वालेकुम असलाम दुआ हाणे ॾिसो मां दुआ खे सुञाणे वञा थी ईअं न दुआ छाला ख़ुशि आहियो अलहमदिल्ला तॾहिं त भला मज़ो न आहे छा अॼु सफ़ा एनर्जी डाउन लॻी पई अथई हा ॾिस मां सम्झी वियसि. अच्छा दुआ ॿुधायो प्रोग्राम ॿुधो पिया अच्छा टॉपिक जी दुआ छा चवंदी अला इहो त ग़लति आहे न चलो इहो ॿुधायो त तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो आहे ब्यूटी क्रीम हणो पिया रिज़ल्ट मिलियो आहे दुआ खे चलो चलो माण्हुनि खे छा चवंदा हणो बाबा हणो वाइट ब्यूटी क्रीम हणो ईअं न चलो ॿियो छा चवंदी दुआ अॼु दुश्मन खे सलाम न ॾींदी छा तबियत डाउन आहे न लाइ ओके ओके थैंक यू सो मच थैंक यू दुआ जी कसम अथई कसम अथई सही आहे पोइ त चलो दुआ जे दुश्मन खे बि असां वेलकम चओ था ईअं न ओके थैंक यू सो मच दुआ तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई ऐं तव्हांजी तबियत ठीकु थी वेंदी जल्दी ठीकु आहे मौसम जो बि थोरो इशू थी सघे थो तव्हां बर्फ़ घणी खाधी हूंदी लॻे हलो कुझु ईअं बि थींदो आहे त अगरि असांखे जेको आहे न कॾहिं कॾहिं थोरी पंहिंजी तबियत बि सम्झ में न ईंदी आहे त इहो थी छा वियो आहे ओके सो तव्हां बि हा बिल्कुलु तव्हांजो कॉल्स अचनि थियूं और कॉलिंग नंबर आहे 0332132128 जल्दी जल्दी कॉल कयो अच्छा मैं ज़रा खो गई थी आगे कॉमेंट्स की जाने ओके सो ये कॉल हम देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो जी हेलो इतना भाई सन्नाटा क्यों है ओके सो नेक्स्ट कॉल नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है. हेलो जी वालेकुम अस्सलाम
4: अहमद
0: अंसारी अच्छा मतलब मुझे कनन थोड़ो प्रोसेस कयो बुधी मां सही ॿुधांदी या न माशाला माशाला इहा त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे. मूंखे ॿुधायो त तव्हांजी पहिरियों दफ़ो कॉल लॻी आहे तव्हां ख़ुशी में छा चवंदा मूंखे बि यकीन नथो अचे अच्छा टॉपिक ते तव्हां जवाब ॾेई छॾियो
4: आहे
0: ऐं तव्हां प्रोडक्ट लॻाइण जे इरादे में आयो अञा ताईं कहिड़ो हणो था
4: पिक्चर मोकिलींदा
0: हा पिक्चर किथे मोकिलींदो अच्छा इहो बि ठीकु आहे असां अॻिते हली सिस्टम कंदासीं त तव्हां पंहिंजा फोटोज़ बि असांखे मोकिले सघो था चलो तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया ए मंसारी चलो चलो ज़बरदस्त आहे तव्हांजो फुल फॉर्म छा आहे ए मंसारी जो अली मुर्तज़ा तव्हांजो नालो इलाही ख़ूबसूरत आहे माशाल्लाह ओके सो ॿियो छा चवंदा
4: ॿियो कुझु
0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
8: ढाडो सुठो
7: जीए FM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज़।

हमले जी सूरत में खिते जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करण जी धमकी दई छी। ईरान फौज जो खात्मे नबिया हेडक्वार्टर जे तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी चयो आहे त आबनार मुज़ ईरान जे रेड लाइन आहे, अमेरिका के मुदाखलत करण न डींदासीं। ट्रंप जे धमकियुनि ते अमल कयो वियो आहे। ईरान जे बुनियादी ढांचे खे निशानो बणायो वियो त खिते जे बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहंदो। ईरानी फौज जे तर्जुमान मोहम्मद अकरम मिनिया चयो त खिते जे मुस्लिम रियासतनि सां टकराव जो इरादो न आहे। जेकॾहिं अमेरिका जी जंग जारी रही त जंग नवनि मुआज़नि सां पकिड़िजी वेंदी। ईरानी फ़ौज मुल्की वकार, सलामती ऐं सरहदनि जो तहफ़ुज़ करणु ॼाणे थी।

0: अमेरिका ईरान जाए कबे ते हमला जारी। अमेरिकी फौज जा ईरान जे मुख्तलिफ शहरन ते फिजाई हमला। ईरानी शहर सेमनान में हवाई अड्डे के भी निशानो बनायो वयो। सेनेट काम मौजूद अमेरिकी फौज अबन हरमुज में खतरो बणजंदड़ ईरानी सलाहियतन के निशानो बनायो आहे। ईरान जाबे खिते में मौजूद अमेरिकी अड्डन ते ड्रोन ए मिसाइल हमला। ईरानी फौज उर्दन बहरीन ए कुवैत में मौजूद अमेरिकी फिजाई अड्डन के निशानो बनायो आहे। उर्दन अठ ईरानी मिसाइल फिजा में तबाह करण की तस्दीक करे छी। पाकिस्तान एक भेरो बीहर अमेरिका ए ईरान में शुरू थियल चिकताण ते गणती जाहिर करे छी। धुरिन खां सहप ए सबुर जो मुजाहरो करण जो मुतालबो। मसलो गालिन जरिए हल करण ते जोर। परडेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे ते खिते जी मौजूदा सूरत हाल ते नज़र आहे। पाकिस्तान मसले जे हल लाइ गालिन ते यकीन रखे थो। तकरार कंहिंजे बि मुफ़ाद में नाहे। पाकिस्तान अमुन कोशिशनि तां हथ नाहे खयो। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहणु घुर्जे। अमेरिका ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण ते गौर शुरू करे छॾियो। अबन हरमुज भरिसां ईरानी ॿेटनि ते अमेरिकी फ़ौज मोकिलण जो इम्कान। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि आला सतही इजलास में सदर ट्रंप खे सिफारती कोशिशनि सां गॾु ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर ट्रंप खे ईरानी ॿेटनि ते कब्ज़ो करण समेत शदीद फ़ौजी कार्रवाइयुनि बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रंप कंदो। नायब वज़ीर आज़म एसाक डार हिकु ॾींहं जे दौरे ते चीन रवानो। एसाक डार शंघाई में चीनी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। वरे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रेक डाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि होरा खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मैट्रिक टन कणक गुम हुजण जी तस्दीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। खोराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़। वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: बार में बड़ा नुकसान हो गया, लगता है सब कुछ खत्म हो गया। मैं उसने सामने रखी चाय का कप उठाया, मुस्कुराकर पूछा, अगर ये कप अभी गिरकर टूट जाए तो? वो बोला, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। दोस्त ने फिर पूछा, और अगर तुम्हारा मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए तो? वो हल्का सा मुस्कुराया, नया खरीद लूँगा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर दोस्त ने आहिस्ता से पूछा, और अगर एक दिन लोग तुम पर एतमाद करना छोड़ दें? इस बार वो दोस्त खामोश हो गया। दोस्त ने दोबारा कहा, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, कारोबार फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन एक बार एतमाद टूट जाए तो उसे वापस बनाने में कभी कभी बरस लग जाते हैं। वो शख्स काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ माली नुकसान पर रो रहा था, जबकि इसकी असल दौलत इसका किरदार और लोगों का एतमाद है। याद रखिए, नुकसान हमेशा पैसों का नहीं होता, बाज़ों का झूठ का एक जुमला, वादा खिलाफी का एक लम्हा या बेईमानी का एक फैसला इंसान से वो दौलत छीन लेता है जो दुनिया की कोई करेंसी वापस नहीं खरीद सकती। और वो दौलत है अच्छा किरदार और लोगों का एतमाद। अगर आपको लगता है कि ये बात आज के माशरे में हर शख्स तक पहुंचनी चाहिए, तो ये बात आपने दूसरों से शेयर करें। तमाम सामेईन को वेलकम कहेंगे, और हमारी दुआ है कि हमारे तमाम सामेईन को अल्लाह तबारक ताला जान माल ईमान आबरू रोज़ी रिस्क इल्म अमल घर दस्तरखान औलाद ज़िंदगी खुशियाँ इबादत तकवा अखलास सादगी आजजी इंकसारी और उम्र में बरकतें रहमतें वसतें रुफतें और बुलंदियों और रूज अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतियाब रखें, उन फूलों की तरह खुश खुर्रम हमेशा आबाद रहे, रब्बे कायनात हमेशा आप सब पर मेहरबान रहे, आमीन सुम आमीन। जनाब, आपसे होनी है आज ढेरों ढेर गपशप, और आज का टॉपिक भी मैं आपको बता दूं, आपने मुझे बताना है आपके नज़दीक इंसान की सबसे कीमती दौलत क्या है। आपको तीन ऑप्शंस बताने वाली हूं, ऑप्शन नंबर 1 अच्छा किरदार, ऑप्शन नंबर 2 लोगों का एतमाद, और ऑप्शन नंबर 3 अल्लाह का तकवा। आपके नज़दीक इंसान की सबसे कीमती दौलत क्या है, ये आज आप मुझे बताने वाले हैं। और ये बताने के लिए आपने डायल करना है अपने मोबाइल में 03136615688। ये हमारा लाइव कॉल नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके हमें बताएंगे। और SMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने लिखना है MP के एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना कर देना है 8881 पर। और जनाब, मैं अपने आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करना चाहूंगी एक बहुत ही प्यारे कलाम के साथ। आइए मिलके मुस्तफीद होते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत आवाज़।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम, यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अब बर्तन चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना जल गया, उसका आसान ये तरीका जिसे आप अप्लाई करेंगे ये बर्तन को बिल्कुल नया बना देगा। करना आपने ये है कि बहुत ज्यादा जो जला हुआ बर्तन है उसमें 2 खाने के चम्मच बेकिंग सोडा डालने हैं और उसके बाद उसे पानी शामिल करना है और 10-10 मिनट के लिए इसे अच्छे से उबलने के लिए रख दें। जब ये पानी अच्छे से उबल जाए तो फिर इस चूल्हे को जो है फ्लेम ऑफ कर दें और इसे जो है उस बर्तन को और पानी को ठंडा होने दें। ठंडा हो जाने पर स्पंज या ब्रश से आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों से जो है आप इस बर्तन को वॉश करेंगे तो ये जितना भी जला हुआ बर्तन है ये ठीक होगा। इसमें अगर आप थोड़ा सा लीमू का रस या सिरका भी शामिल करके अच्छे से जो है आप इसे वॉश करेंगे तो आपको जले हुए बर्तन जो है वो ऐसा फील होगा जैसे बिल्कुल न्यू खरीदा है आपने। तो जनाब ये है टिप आज का और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाली हूँ नेटा के बैंकॉक में वाके दफ्तर में उस वक्त गैर मामूली सूरत हाल पैदा होगी जब पार्सल गुलहरी कुछ देर तक दफ्तर के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमती रही जिसके बाद वहाँ मौजूद जो अमला है उसमें जो है हलचल मच गई यानी के परेशान हो गए सबके सब। जब गुलहरी जो है ऑफिस में छलांगे लगा रही थी तो सफाई करने वाले अमले की एक रुकन की उंगली में जो है मामूली सी खराश भी आई लेकिन मुतालका टीम की जानिब से जल्द ही गुलहरी को बहिफाजत पकड़ कर सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। इस गैर मामूली वाकये के बाद एक मुलाजिम ने एआई का इस्तेमाल करते हुए गुलहरी से मुतालिक तदाबीर पर मबनी मजाया वीडियो भी बनाई लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। पार्सल से गुलहरी आ गई बाहर और ये गुलहरी जो है वो सांस कैसे ले रही थी किसी बंद पार्सल के अंदर, सोचने वाली बात है ना। हैरत अंगेज बात है मेरे लिए तो। और मास्को में रूस में फौजी मश के दौरान अचानक मशीन गन बेकाबू हो गई, उससे अंधाधुंध फायरिंग होने लगी जिसकी वजह से करीब करीब फौजी कलाबाजियां लग गई। आज जाने कभी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन आ जाती है तो जनाब हर किसी को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं, सही है ना। फी मिनट 5,000 गोलियां फायर करने की सलाहियत वाला हथियार बेकाबू होकर घूमने और फायर करने लगा। हथियार के अचानक साकेट से निकलने के नतीजे में फौजी हवा में उछलकर दूर जा गिरा और इस अजीब वाकये और खतरनाक वाकये की सोशल मीडिया पे वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रही है। हम इस वीडियो की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी, ना ही ये वाजे कि ये वाकया कब और कहां पेश आया। वैल जना वहाँ जितने भी फौजी मौजूद थे उन सब फौजी भाइयों से मुझे हमदर्दी महसूस हो रही है। सीधी सी बात है, ऐसी अचानक उफ्ताद अगर किसी के भी सर पे आ

0: अच्छा जी, अक्सर इस तरह ऐसा होता है जब हम अपनी फैमिली के किसी भी फैमिली मेंबर की जो है बीमारी की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। और ऐसा ही एक वाकया जो है वो पड़ोसी मुल्क में पेश आया, जब शीरख्वार बच्चे के अहलखाना ने खातून डॉक्टर पर तिब्बी गफलत का इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। 18 महीने के बच्चे को होंठ पर जख्मी की वजह से टांके लगाने के लिए एनेस्थीसिया दिया गया था, जिसके बाद वो 5 दिन तक तश्वीशनाक हालत में रहा। दीवांश नामी ये बच्चा 5 जुलाई को अपने घर के सहन में खेलते हुए गिरा, जिससे इसके होंठों पर कट लग गया था। इसे बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जख्म पर टांके लगाने के लिए उसे बेहोशी की दवा दी गई, जिसके फौरन बाद उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई और वो दोबारा होश में ना आया। अस्पताल ने बच्चे के अहले खाना के तिब्बी गफलत के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बचाया। बच्चे को एनेस्थीसिया देने के फौरन बाद अचानक दिल का दौरा पड़ा था, जिस पर उसे फौरी तौर पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। और इंतजामिया ने कहा दवा की बिल्कुल सही निपितुली मकदार देने के बावजूद भी एनेस्थीसिया के बाद ऐसी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान तमाम तिब्बी कवानीन पर अमल किया था, बच्चे की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये बच्चा जानवर ना हो सका। और ये एक वाकया ऐसा कि जाहिर सी बात है जिनका बच्चा उनकी फैमिली में, तो जाहिर सी बात है वो सब लोग डिस्टर्ब हुए हैं। अनएक्सपेक्टेड होता है, और सबसे ज़्यादा जो इंसान हर्ट होता है के जो बंदे को बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, लेकिन जब बंदा वहाँ से वापस दुरुस्त हालत में नहीं आता तो ये बहुत बड़ा एक लॉस होता है। श्रीलंका में जारी एक मकामी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक नौजवान क्रिकेटर मैच के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से जिंदगी की बाजी हार गया। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब नौजवान खिलाड़ी मैदान में बैटिंग कर रहा था, पिच पर मौजूद क्रिकेटर को अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ा और वो वहीं गिर गया। वहां मौजूद खिलाड़ियों इंतजामिया ने फौरी तौर पर इसे तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की, ताहम वो जानवर न हो सका, मौके पर ही दम तोड़ गया। और जनाब जो इस दुनिया में आया है, हमारा अकीदा तो यह है कि उसने दुनिया से वापस जाना है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो डेथ होती है उससे जो है मुतासरा जो फैमिली होती है ना, उन्हें सब्र नहीं आता। अल्लाह ताला सबके मामलात में आसानी करे। वेल जनाब, यहाँ पर एक छोटे से तशहीरी वक्फे का वक्त हुआ जाता है, इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।
1: जिंदगी की लहर जिए। FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। प्रिटी हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
0: सुनते रहो GFM 90.8।

0: इंसान की सबसे कीमती दौलत क्या है और ये आपने मुझे बताना है। और नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब, खुश आमदीद कहेंगी। कौन बात कर रहा है?
1: लालकाना से लियाकत अली बात कर रहा हूँ।
0: लियाकत अली, वेलकम कहेंगे।

0: कि आपको अपने प्रोग्राम में टॉपिक सुना है आपने आज का?
1: टॉपिक लेकिन भूल गया हूँ थोड़ा।
0: चले कोई मसला नहीं है, क्या कहेंगे सब सुनने वालों से?
1: आपकी जो बातें हैं ना
0: जी,
1: वो अल्लाह से नजदीक कर देती हैं।
0: ये अच्छी बात है, ये बातें आप दूसरों से भी शेयर किया करें ताकि लोगों की मालूमात में इजाफा हो।
1: और मेरी भांजी है, वो भी आपका प्रोग्राम शौक से सुनती है।
0: क्या नाम है आपकी भांजी का?
1: नाम तो मैं इसका नहीं बता सकता आपको।
0: कोई मसला नहीं है, जो छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी भांजी, उसे हमारी तरफ से ढेरों ढेर प्यार, हमारी तरफ से बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू। और जो प्यारे प्यारे से बच्चे हमें सुन रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब के जो है रोशन मुकद्दर करे, आमीन। और नेक्स्ट कॉलर, अभी वक्त है न्यूज़ में, चलें जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, वेलकम कहेंगे आपको, क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
2: पहले तो आपने बताया आप ठीक हैं।
0: आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए यास्मीन आप ठीक हैं?
2: अल्लाह का।
0: अच्छा आपने ये क्यों पूछा, आप कैसी हो? वैसे आप कभी ये सवाल पूछती नहीं है, आज क्यों पूछा, क्या वजह है?
2: अभी पता है कि आजकल आपका मूड बहुत अच्छा था, माशाल्लाह बहुत प्यारा शो
0: हुआ। अच्छा पता नहीं, मैंने तो नहीं किया।
2: माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है, कल अच्छी आ रही थी, आज मेरी तरफ बहुत अच्छी आ रही है।
0: अल्लाह प्लीज मेरी आवाज़ की तारीफ मत किया करो, मुझे हंसी आती है। टॉपिक के बारे में बताइए, क्या कहेंगी?
2: इंसान की
0: हाँ, वो शायरी थोड़ी डिफरेंट शायरी थी, मैंने कुछ, मुझे टाइम मिला हुआ था, मैं बिजी नहीं थी, तो मैंने फिर कुछ न्यू शायरी, मैंने सोचा शामले प्रोग्राम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है प्रोग्राम में भी मसरूफ हो रहे होते हैं ना, तो फिर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं हो पाती हमारी।
2: जी अल्लाह
0: ताला आपका हमेशा दुआ रखे, आपका थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह थैंक यू, आप बस दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू यास्मीन, अल्लाह हाफिज। और हमारे जो रेगुलर लिसनर होते हैं, उसे उन्हें हमारे जो है मूड स्विंग का भी पता होता है, इनका मूड कब कैसे होता है। अच्छा मजे की बात बताऊं, मैं आज का प्रोग्राम ना वो मैं मतलब उतने उससे तवज्जो से नहीं कर पा रही हूँ जितना शायद कल वाला किया था, मजे की बात ये है। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम,
0: खुश आमदीद कहेंगे, कौन बात कर रहा है? अरे वाह, वेलकम कहेंगे अदा आपको, आप बताइए इंसान की सबसे कीमती दौलत कौन सी है? चले आप अपने दोस्तों को याद कर लें, आपके दोस्त आपको चाय नहीं पूछेंगे फिर अगर आपने उनका नाम रेडियो पे नहीं लिया।
3: बिल्कुल, आसिफ चर है।

0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लीजा, बहुत शुक्रिया। और कौन कौन सुन रहा है मुझे? निदा सुन रही है?
1: जी जी निदा सुन रही है, अम्मी सुन रही है, मेरी पूरी फैमिली सुन रही है।
0: सबका बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। अम्मी से कहिएगा मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू।
1: अल्लाह ताला आपको खुश रखे। माशाल्लाह शो बहुत अच्छा करती है, हमारी जिंदगी में रौनक लगा देती है।
0: चलें ये जो न्यूज ब्रेक स्टार्ट होने वाला है ये अलीजा मैं आपको डेडिकेट करती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
1: नहीं मैं न्यूज ब्रेक सुनती ही नहीं,
0: लेकिन आज सुनना है। ओके और जनाब ये थी अलीजा हमारे साथ, और बिना वक्त जाया किए चलते हैं हम ब्रेक की जाने।
2: It's 4 p.m. This time check is brought to you by Fakiri Dex Ointment.
3: आप सुनेंगे GAFM Network.

ढांचे के निशानो बनायो वयो त हिते जे बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहंदो। ईरानी फौज जे तर्जमान मोहम्मद अकरमिया चयो त हिते जे मुस्लिम रियासतनि सां टकराव जो इरादो नाहे। जेकॾहिं अमेरिका जी जंग जारी रही त जंग नवनि मुआज़नि ताईं पखेड़जी वेंदी। ईरानी फौज मुल्की वकार सलामती सरहदनि

आहे की ॿिए ते हमला जारी। अमेरिकी फ़ौज आहे ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते फिज़ाई हमला। ईरानी शहर सेमनान में हवाई अॾे खे बि निशानो बणायो वियो। सेनेट खां मौजूदु अमेरिकी फ़ौज आबना हर्मुज़ में ख़तरो बणजंदड़ ईरानी सलाहियतनि खे निशानो बणायो आहे। ईरान जा बि ख़िते में मौजूदु अमेरिकी अॾनि ते ड्रोन ऐं मीज़ाइल हमला। ईरानी फ़ौज अर्दुन, बहरीनी ऐं कुवैत में मौजूदु अमेरिकी फिज़ाई अॾनि खे निशानो बणायो। उर्दन 8 ईरानी मिज़ाइल फिज़ा में तबाह करण जी तस्दीक करे छॾी। पाकिस्तान हिकु भेरो ॿीहर अमेरिका ऐं ईरान में शुरू थियल छिकताण ते ॻणती ज़ाहिर करे छॾी। धुरियुनि खां सहप ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो करण जो मुतालबो। मसलो ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते ज़ोर। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी चयो आहे त ख़िते जी मौजूदा सूरतहाल ते नज़र आहे। पाकिस्तान मसले जे हल लाइ ॻाल्हियुनि ते यकीन रखे थो। तकरार कंहिं बि मुआज़ में नाहे। पाकिस्तान अमुन कोशिशुनि तां हथ नाहे खयो। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहण घुर्जे। अमेरिका ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण ते ग़ौर शुरू करे छॾियो। आबना हर्मुज़ भरिसां ईरानी ॿेटनि ते अमेरिकी फ़ौज मोकिलण जो इम्कान। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जे रिपोर्ट मूजिबि आला सतही इजलास में सदर ट्रंप खे सिफारती कोशिशुनि सां गॾु ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर ट्रंप खे ईरानी ॿेटनि ते कब्ज़ो करण समेत शदीद फ़ौजी कार्रवाइयुनि बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रंप कंदो। Thank you.

0: मुलाकातूं कंदो किते जी सूरत हाल ते गाल बोल थींदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ ब्रेकडाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खुराक खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मेट्रिक टन कणक गुम थियण जी तसदीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मेट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। खुराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़। वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: It's time to commercial break.
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: सुबह

क्या आप जानते हैं माहिरीन सेहत ज्यादा नमक खाने के हक में नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, खास तौर पर दिल की बीमारियां। आपको ये जानकर हैरत होगी कि थोड़ा सा नमक हमारी सेहत के लिए जरूरी है। दालगान के लिए इसकी मकदार 1 ग्राम रोजाना, जबकि बच्चों के लिए इससे भी कम। और नमक का बुनियादी जो सोडियम है, ये खुलियों को मुतहरिक रखता है। अगर आपको पसीना ज्यादा आता है तो मालिज आपको मशवरा देते हैं कि आप ORS पिएं, ताकि आपके जिस्म से जो सोडियम और नमक निकल चुका है उसकी कमी पूरी हो जाए, अंदरूनी तवाजुन बरकरार रहे। अलबत्ता माहिरीन सेहत ज्यादा नमक खाने के हक में नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, खास तौर पे दिल की बीमारियां। और नमक ज्यादा खाने से जिस्म में पानी रुकने लगता है, ब्लड प्रेशर में से इजाफा रहता है, जिससे दिल की बीमारियां पैदा होने लगती है। और जिस्म में नमक की ज्यादती हो जाए तो ये इम्कान होता है कि आपका दिल मामूल से बड़ा हो जाएगा, दिल की शरियानें सिकुड़ने लगेंगी, जिससे सीने में दर्द रहने लगेगा और सांस लेने में दिक्कत होगी, आप पर थकन तारी रहने लगेगी। और इन अवामिल के नतीजे में दिल के नाकारा होने का खतरा भी बढ़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से फालिज भी हो जाता है। और मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ, अगर आपके जिस्म में नमक ज़्यादा हो जाएगा तो हड्डियों का कैल्शियम कम होकर यूरिन के में शामिल होने लगेगा, जिससे हड्डियाँ खस्ता भुरभुरी हो जाएंगी। इससे सारे अमल से हड्डियाँ कमज़ोर पतली होती चली जाती हैं और दबाव पड़ने पर टूट भी जाती हैं। आज इस समय ज़रूरत से ज़्यादा नमक हो जाता है तो कैल्शियम ज़ाया होने लगता है, जिससे गुर्दों पर असर पड़ता है। जब कैल्शियम की ज़्यादती हो जाती है तो गुर्दों में पत्थरी पड़ती जाती है। जिस समय जब नमक की मिकदार बढ़ जाए तो जिस समय पानी जमा होने लगता है, जिससे आपके जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं ये फूल जाते हैं, इनमें वर्म आ जाता है, खास तौर पे जिस्म के निचले हिस्से में। सोडियम खून और मायों को तनासुब में रखता है, ज़्यादा नमक खाने से जिस्म में मौजूद तेजाब का तवाजुन बिगड़ जाता है, मैदे में जलन पैदा होती है, इसके नतीजे में निज़ाम हज़म बिगड़ जाता है, आंतों में ज़ख्म पैदा होते हैं। और जब जिस्म में सोडियम की ज्यादती हो जाती है तो इससे हार्मोन्स का तवाजुन बिगड़ जाता है, इसके नतीजे में सर चकराने लगता है और असा में खिंचाव बाज़ औक़ात रेशा भी पैदा हो जाता है। और लिहाज से इसकी बुनियादी ज़रूरत है, और इंसानी जिस्म के हर खुलिए का इनसार सोडियम पर है, जो नमक का जुज़्व है। और नमक इंसुलिन की हसासियत को भी बढ़ा देता है, इससे खून में शक्कर की तवाजुन बरकरार रहता है। और चनाचा डायबिटीज के मरीजों को नमक से परहेज नहीं करना चाहिए, और मुनासिब मकदार में जो है नमक लेना चाहिए। इसे जो है ज्यादती किसी भी चीज की होना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सेहत के लिए। नमक खिंचाव पैदा करने वाले हार्मोन्स को काबू में रखता है। अगर एक गिलास में एक चुटकी नमक मिलाकर पी लिया जाए, इसे नींद अच्छी आती है, ये गजा हजम करने में भी मदद देता है, लेकिन बशर्ते कि आप ऑलरेडी जो है हाई BP के पेशेंट ना हो और दीगर कई अमराज, आपको किडनी इशू ना हो। अगर ये तमाम तर मामलात आपके साथ हैं तो उसके बाद भी आपने जो है नमक का एक्स्ट्रा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने मालिक से मशवरा करना है। आज जनाब, मैं जो आपको ये इन्फो देती हूँ, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होता है ताकि आपको जो है इस बारे में इल्म हो, और आप लोग जो है खुदा ना खास्ता जब हमें कुछ मालूम नहीं होता तो हम जो है नुकसानात की तरफ भी चले जाते हैं। तो जब आपके पास नॉलेज मौजूद होगी तो आप करेंगे एहतियात, और एहतियात बेहतर होती है पछतावे से। और महक मेरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हो? हर इंसान में अल्लाह का तकवा होना चाहिए बेशक। और बाजी, इस्लामी डेट क्या है? कॉल नहीं लगती है। सलाम आपको, तमाम सामईन को, सबकी जानिब से। वालेकुम अस्सलाम महक, आज पहली तारीख है, सफ़र का जो है मंथ स्टार्ट हो गया है, और फर्स्ट जो है चांद की पहली जुमेरात है आज, जिसे कहते हैं नौ चंदी जुमेरात, तो जनाब आज चांद की पहली तारीख है। बहुत शुक्रिया मैं एक शामली प्रोग्राम होने के लिए। हाउ आर यू गुल, दिन में आरजे रात को डॉक्टर एडुकेसी वाले प्रोफेशन को भूल गए आप। और 78 मोरी से राजा हमीरचंद, किशोर कुमार, हीला लाल, अकबर कुमार आपने कहा है, ओके नूर जहां या मेहदी हसन। तो मैंने एक गाना मैडम का पहले वाले घंटे में शामिल किया था, लेकिन बात कर रही थी तो आवाज़ कम थी, आप लोग जज नहीं कर पाए। मैं मैडम को प्ले कर चुकी हूँ,
और मेहदी हसन के सॉन्ग की मुझे फरमाइश आई थी, रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन मजे की बात यह है कि वो मेहदी हसन का सॉन्ग नहीं था, उसे सलीम रजा ने गाया है। जिस भी भाई ने फरमाइश की थी उसने सिंगर ने मेहदी हसन बताया था, जबकि मैंने चेक किया तो मेहदी हसन का गाना नहीं था, जबकि इसी गाने को सलीम रजा की आवाज में गाया गया है। और ये मूवी जो है 1961 में रिलीज हुई थी, ये उसका सॉन्ग है, तो वो मैंने क्यों किया हुआ है। और यहाँ पर एक मैंने दो गाना रखा हुआ है, एन अय्यर की आवाज़ है, एन अय्यर के सॉन्ग बड़े ही प्यारे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत फेमस गीत दिए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को। लेकिन आज मैं एन अय्यर का जो गाना आप लोगों को सुनवाने वाली हूँ, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग है। दो गाना है, दोनों जो है सिंगर वो कमाल के हैं, और ये कुछ जो है ना इस सॉन्ग की जो क्वालिटी, हर सॉन्ग में यही वाली मिल रही है इस सॉन्ग।

0: जिंदगी की लहर जीए FM 88 नेटवर्क सिंध की
1: जोड़ की लीफ।
0: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
0: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
0: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
0: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
0: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
0: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
0: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2-3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: घनजवार ममन बच्चन सम्मानित अजय।
1: अदा क्या आंसर है मुझे बताए, राइट आंसर आएगा। राइट आंसर है अदा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जनाब हमें बहुत खुशी होती है जब आप बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त जवाब बता रहे होते हैं ना, शेरों खून मेरा कम से कम बढ़ जाता है ये सोच के कि मेरे लिसनर्स बहुत इंटेलिजेंट है, हर काम में इंटेलिजेंट है, झगड़े फसाद में भी नंबर वन है और अच्छा बोलने में भी नंबर वन है। और आगे वाली क्लास में जो आगे वाली सीट है उस पर बैठ जाते हैं। अच्छा ये क्या है जो जिंदा हो तो जमीन में और मर जाए तो जमीन के बाहर, ये क्या सीन है भाई? आपने मुझे बताना है, जिंदा हो तो जमीन में और मर जाए तो जमीन के बाहर। और कोशिश करूंगी कि आपकी कॉल श्यामले प्रोग्राम कर लूं। चले जी अभी वक्त है नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
1: वेलकम कहते हैं, कौन बात कर रहा है? राइट आंसर अलीजा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज भाई। यही राइट आंसर है पौधा। और दुरुस्त जवाब के लिए बहुत शुक्रिया अलीजा। और नेक्स्ट जो है आपके मैसेजेस भी मुझे शामिल करने हैं। बलोचा चौहान गुट, हाजी याकूब चौहान, नूर मोहम्मद चौहान, फैजान चौहान, आपका शो बहुत अच्छा है। ओ माय गॉड, अरे ये तो अब काफ़ी देर हो गई, चले कोशिश करती हूँ। आपने जो सॉन्ग कहा है ये ब्रेक के बाद, थोड़ा बहुत टाइम है अभी। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है फरमाइशें ऐसे कर रहे होते हैं बहुत लेट आके, या फिर मैं ही मैसेज आप लोगों के लेट पढ़ती हूँ।

ढांचे के निशानो बनायो वो तिते जे बचल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहो। ईरानी फौज के तर्जमान मोहम्मद अक्रमिया चयो त हिते जे मुस्लिम रियासतन सां टकराव जो इरादो नाहे। जेकॾहिं अमेरिका जी जंग जारी रही त जंग नवनि मुआज़नि ताईं पखेड़जी वेंदी। ईरानी फौज मुल्की वकार सलामती सरहदनि जो

सहब ऐं सबुर जो मुज़ाहिरो करण जो मुतालबो मसलो ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते ज़ोर परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी चयो आहे त ख़िते जी मौजूदा सूरतयाल ते नज़र आहे पाकिस्तान मसले जे हल लाइ ॻाल्हियुनि ते यकीन रखे थो तकरार कंहिं बि मुआज़ में नाहे पाकिस्तान अमुन कोशिशनि तां हथ नाहे खयो इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहणु घुर्जे अमेरिका ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण ते गौर शुरू करे छॾियो अबने हरमुज़ भरिसां ईरानी बेटनि ते अमेरिकी फ़ौज मोकिलण जो इम्कान अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि आला सतही इजलास में सदर ट्रंप खे सिफारती कोशिशुनि सां गॾु ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे ब्रीफिंग में सदर ट्रंप खे ईरानी बेटनि ते कब्ज़ो करण समेत शदीद फ़ौजी कार्रवाइनि बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रंप कंदो

0: वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खुराक खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मेट्रिक टन कणक गुम थियण जी तसदीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मेट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। खुराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़। वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं।
1: एक खिताब के दौरान हमारे पाक अफवाज के जवानों, हमारे शौदा और हमारे गाजियों के बारे में कमेंट किया गया, जिसके हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप किसी इदारे को इस तरह कसूती स्टेटमेंट दे दो और खुद तक उनको शौदा के लिए, ये बहुत बड़ी जाती है। ये नहीं, किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं मौलाना साहब इस बयान को वापस लें। ये मेरी गुजारिश होगी, इल्तजा होगी, क्योंकि उनकी भी सब बहुत बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। उनको चाहिए कि इस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें। इस तरह
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर। KTN न्यूज
3: GAFM 88 की सरमस्त आवाज से
4: तो डालो धमाल और बोलो
3: GAFM 88
4: सिंध की आवाज।
5: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक। क्या
6: आप जोड़ों के दर्द
7: एनर्जी क्रीम
6: कुदरती अज्जा से तैयार करता
7: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
6: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
7: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
6: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
7: गर्दन और कंधों के दर्द
6: और पट्टों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब
7: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3-4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
6: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनर्जेटिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
7: फकीरी एनर्जेटिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
8: मोहम्मद उमर बुघियो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्स एंड अलाइट हेल्थ साइंसेज मीरपुर खास में मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन क्रिटिकल केयर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर। दाखिला फीस 5,000, महाना फीस 4,000। रिकॉग्नाइज्ड बाय अलाइट एंड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल एफिलिएटेड विद साइंस टेक्निकल बोर्ड। एड्रेस मोहम्मद उमर बुघियो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइट हेल्थ साइंसेज मीरवा रोड नियर डिस्ट्रिक्ट जेल डिफेंस सिटी मीरपुर खास। मजीद मालूम के लिए 03002823667 0333721443

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन खेडियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

अमेरिका ईरान जाके बेते हमला जारी। अमेरिकी फौज जा ईरान के मुख्तलिफ शहरों ते फिजाई हमला। ईरानी शहर सेमनान में हवाई अड्डे के भी निशानो बनाया वयो। सेनेट का मौजूद अमेरिकी फौज अबना हरमुज में खतरो बढ़जंदड़ ईरानी सलाहतन के निशानो बनाया है। ईरान जा भी खिते में मौजूद अमेरिकी अड्डन ते ड्रोन मिजाइल हमला। ईरानी फौज अर्दुन बहरीनी कुवैत में मौजूद अमेरिकी फिजाई अड्डन के निशानो बनाया। उर्दन अठ ईरानी मिजाइल फिजा में तबाह करण की तस्दीक करे छी। पाकिस्तान एक भेरो बीहर अमेरिका ईरान में शुरू थियल चिकटाण ते गणती जाहिर करे छी। धुरिन का सहप ए सब्र जो मुजाहरो करण जो मुतालबो। मसलो गालिन जरिए हल करण ते जोर। परदेही तर्जमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे ते खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते नजर आहे। पाकिस्तान मसले के हल लाइ ॻाल्हियुनि ते यकीन रखे।

पाकिस्तान अमन कोशिशन ता हथ नाहे खयो इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहन घुर्जे अमेरिका ईरान में जमीनी फौज मोकलण ते गौर शुरू करे छड्यो अपने हर्मुज भरसा ईरानी बेटन ते अमेरिकी फौज मोकलण जो इम्कान अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिब आला सतही इजलास में सदर ट्रंप के सिफारती क्वेश्चन सां गॾु ईरान में जमीनी फौज मोकलण बाबति ब्रीफिंग डि॒नी वई आहे ब्रीफिंग में सदर ट्रंप खे ईरानी बेटन ते कब्ज़ो करण समेत शदीद फौजी कार्रवाइयुनि बाबति बि ब्रीफिंग डि॒नी वई आहे ज़मीनी फौज मोकलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रंप कंदो

0: हर हिक ॾींहं जे दौरे ते चीन रवानो एसाकदार शंघाई में चीनी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल थींदी वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जी हिदायत सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खुराक खाते बाबति इजलास सूबे मां 6,10,000 मैट्रिक टन कणक गुम थियण जी तसदीक अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा खुराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़ वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन कदम खणंदासीं
1: पहले एक खिताब के दौरान हमारे पाक अफवाज के जवानों हमारे शौदा और हमारे गाजियों के बारे में कमेंट किया गया जिसके हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप किसी इदारे को इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें और खुलकर उनके शौदा के लिए ये बहुत बड़ी जाती है, ये नहीं किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं मौलाना साहब इस बयान को वापस लें, ये मेरी गुजारिश होगी इल्तिजा होगी क्योंकि उनकी भी सब बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, उनको चाहिए कि इस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें, इस तरह के बयान ना दें, उन बयान को वो वापस लें।
0: सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण मौलाना फज़ुल रहमान खां शहीदनि बाबति बयान वापसि वठण जो मुतालबो करे छॾियो। शर्जील इनाम मेमण चयो त मौलाना फज़ुल रहमान शहीदनि बाबति ॾिनल पंहिंजो बयान वापसि वठे। बयान वापसि वठण सां मौलाना फज़ुल रहमान जी इज़त घटि न थींदी। मौलाना फज़ुल रहमान मामले खे अञा जो मसलो न बणाए शहीदनि ऐं गाज़ियुनि बाबति बयान जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियूं था। शहीद पाकिस्तान जो असासो ऐं असां जो फ़ख्र आहिनि। बयानबाज़ीअ सां शहीदनि जे रुतबे खे को बि नुक़सान नथो पहुचे।

सभिनी खे क़ौमी ज़िमेवारीअ जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। हर कंहिंखे पंहिंजो बयान रखण जो हक़ आहे। क़ौमी मुफ़ाद मुतासिर न थियणु घुर्जे। एम क्यू एम कन्वेनर वफ़ाक़ी वज़ीर डॉक्टर ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो आहे त मुंहिंजे ख़्याल में मौलाना फज़लुर रहमान पंहिंजे बयान ते वज़ाहत पेश कंदो। क़ौमी बयान जो मुतासिर न थियणु घुर्जे। सिंध में पाणी जे खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि सरापा एहतजाज बणियल। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। नंदू में हारे नए आबादगारनि प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल कई। ठिकराटो में महर मानेर जे आबादगारनि पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। अठहठ मोरीअ जे आबादगारनि जाम लगारी शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। रोड़ी में काज़ीबाग जे आबादगारनि पारां बि पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। पोछण ताईं ज़रई पाणी पहुचाए फसल बचाइण जो मुतालबो।

चोहड़ जमाली वेझो ॿिन धुरिन में मामूली ॻाल्हि तां जहिड़ो हिकु ॼणो क़तल ॻोठ गुल मोमन छेर जो में छेर जा बिरादरी जे ॿिन धुरिन में जहिड़ो थियो। जवाबदारनि ग़ुलाम नबी खे लतूं मुखूं हणी क़तल कयो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरिन में छिकताण वधी वई, ॻोठ में ख़ौफ़ पखेड़ियल। कराची जी अदालत में फुर मज़ाहमत ते क़तल थियल डॉक्टर आकाश क़तल केस जी ॿुधणी, गिरफ़्तार जवाबदार सुरेश रामचंद ऐं अनिल अदालत में पेश। अदालत टिनी जवाबदारनि खे 7 ॾींहनि जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। जांच आफ़ीसर मूजिबि जवाबदारनि ख़िलाफ़ शहर जे ॿियनि थाणनि में बि पिण मुख़्तलिफ़ केस दाख़िल आहिनि। सांगड़ में पुलिस लॉकअप में फोत थियल बे एस पी जे डिवाइस होल्डर जे वारसन जो लाश रखी धरणो। पुलिस ते अब्दुल्ला खे तशद्दुद करे मारण जो इल्ज़ाम, ज़िमेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस चयो आहे त अब्दुल्ला दिलि बीहण सबबि फोत थियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: यार कुछ ॾींहं खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
2: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
1: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
2: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: ये

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: मेरे YouTube चैनल नदीम अब्बास खान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए आने वाले गीतों को सुनने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाइए।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

की परस चाक बिरहानी बेताब कज से कई फेरे फट फिराक दिल फाड़ू दहू करे कथा उभडरन अफलाक परवर धनी पाक न खे मेल बारो चो बुढल चया पर सुबह जागी ससुई हु संजे व्यासुर की लग सुबान बरोच जो वही झोरी में झुरकी सात पैजी पर

ਪੁਨਲ ਪਾਏ ਫਿਰੋ ਮੁੰਜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਹਾਲ ਥਈ।

सदकयूं सुदकार गाढ़ो राव रोह में तो वस्यूं करे बसकार चोटो हिन चुड़ेलिए जो लुड़ में लुड़े सवार दोस्त पिरी दिलदार हिन ते कर कबाज बुढ़ल चया छजाई गह सिकायल यार जी में कयुस मोहब्बत में ई महो जेको लिखियो ल

पुराना हाल कैसे।

0: किरण हाल थईस कदे साल लगे रा
1: मुझी लभी न सवाल थई है इस कदे साल लगे रा
0: मुझी लभी न सवाल थई पुनल पास फेरा मुझे फकीरण हाल थई पुनल पास।

पुनल पाए फेरो मुझा फकीरन हाल थई।

सन पिरी अजे आन गज सिपरी के तू थो लही सिज जे मां दिया

चैन ते गुलाम न पियजा प्रभु सदके मजु माल छ पुनल पाए फेरो मुजा फकीरा हाल तई पुनल पाए फेरो मुजा फकीरा।

0: चई पुनल पाए फेरो मुझा फकीरन हालत।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News. Aap
6: ka salamti ae saradan jo tahfuz karan jaane the. अमेरिका ईरान में जमीनी फौज मोकरण ते होर शुरू करे छो अपना हरमस परसा ईरानी बीटन ते अमरीकी फौजी मोकलण जो इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट मूजिब आला सतही इजलास में सदर ट्रंप के सिफारती कोशिशन से गड ईरान में जमीनी फौज मोकलण बाबत ब्रीफिंग दिनी वही है। ब्रीफिंग में सदर ट्रंप के ईरानी बीटन ते कब्जो करण समेत शदीद फौजी कार्रवाई बाबत भी ब्रीफिंग दिनी वही है। जमीनी फौज मोकलण बाबत हतमी फैसलो सदर ट्रंप कर।

पाकिस्तान एक भेरो बीहर अमरीका ईरान में शुरू थियल चिकटाण से गणती जाहिर कर छी धुरियन का सब सफर जो मुजाहरो कर मुतालबो मसलो गालियन जरिए हल कर जोर पड़े तर्जमान ताहिर हुसैन इंद्राबी है खिते की मौजूदा सूरतयाल नजर आए पाकिस्तान मसले के हल लाए गालियन से यकीन रखे तो तकरार कें जेपी मफाद में ना है पाकिस्तान अमन कोशिशन ता हथ नाए खयो इस्लामाबाद मफामती यादाश्त नामे अमल जारी रहन घुर्जे।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हालत इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की। बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: पहले उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारिम को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।
3: ऐसे

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिते सिंध गज्जे थी।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध हुकूमत सिख जे इलाइक़े संगरार मां 5 साल अॻु अगवा कयल डींगरी प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ नई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जोड़े छॾी। DIG सखर जी सरबराही में JIT जांच करे 1 महीने अंदरि रिपोर्ट जमा करण जी पाबंद हूंदी। JIT में SSP सखर, SSP शिकारपुर, SSP लाड़काणो ऐं DSP सखर शामिल। ASI, MIIB ऐं रेंजर्स जा मेंबर, रैंक जा ऑफिसर बि मेंबर तौरु शामिल हूंदा। घरू खाते JIT जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो आहे।

वज़ीर-ए-आज़म खत्ते में जारी चिकताण सबब कें भी इम्कानी चैलेंज के मुंह डियण लाइ तैयारी जी हिदायत करे छी। पेट्रोलियम में शयूं ज़खीरो करण खिलाफ भी कार्रवाई जी हिदायत। शहबाज शरीफ की सदारत हेठ इजलास में पेट्रोलियम शयुनि तवानाई बचत की कौमी मुहिम में आवाम जे सहकार की साराह। वज़ीर-ए-आज़म चाहे तो गुजर सादगी किफ़ायतशारी मुहिम में आवाम भरपूर किरदार अदा किया। हुकूमती सब्सिडी से तेल अघन में वाद के असर के मौसर अंदाज में कंट्रोल किया वो। आम मानुन मोटर साइकिल सवार रिक्शा ड्राइवर ट्रांसपोर्टर के भी तहफुज दिनों वो। पेट्रोलियम शयन के हथरादू कोर्ट पैदा करने खिलाफ कार्रवाई कई वे। जरूरत पवण से वक्तायती हिकमत अमली जोड़ी वे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
2: सुनते रहो GAFM 90.8।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
2: सुनते रहो GAFM 90.8।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

अमेरिका ईरान जा एक बेते हमला जारी अमरीकी फौज ईरानी शहर सिमनान में हवाई अड्डे के निशानों पड़ायो सेंटकॉम मूजिब अमरीकी फौज अपने हरमुस में खतरो पंजड़ ईरानी सलाहियतन के निशानों पड़ायो है ईरान जा भी खत्ते में मौजूद अमरीकी अड्डन ते हमला ईरानी फौज उर्दन बहरेन ए कुवैत में मौजूद अमरीकी फजाई अड्डन के निशानों पड़ायो

ईरानी परडेही घाटे जे तर्जुमान इस्माइल वकाई चयो आहे त अस्पतालनि तोड़ी तिबी मर्कज़नि खे निशानो बणाइण चंगी ॾोह ऐं मज़म्मत जोॻो अमल आहे। अमरीकी हमले खां पोइ अहवास में ॿारनि जे कैंसर अस्पताल खे हंगामी तौर ख़ाली करणो पियो। पाण खे इंसानी हक़नि जो लंबरदार सॾाईंदड़ अस्पतालनि खे निशानो बणाइण ते अखियूं फेराए रहिया आहिनि।

पाकिस्तान एक भेरो बीहर अमेरिका ईरान में शुरू थियल चिकताण ते गणती जाहिर करे छी दूरियन का सब सबर जो मुजाहरो कर मुतालबो मसलो गालियन जरिए हल करण से जोर पड़े तजबान ताहिर हुसैन इंद्रापी है खिते की मौजूदा सूरत हाल से नजर आए पाकिस्तान मसले के हल लाए गालियन से यकीन रखे तो तकरार कें भी मुफाद में ना है पाकिस्तान अमन कोशिशन हथ नाए खो इस्लामाबाद मुफामती अदशनामे अमल जारी रहन घुर्जे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्ठों के खिंचाव,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ਕੰਗਣ ਆਖੋ ਹਾਰ ਆਣਿਆ ਕੰਗਣ ਆਖੋ।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंक की

0: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointments.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil-e-aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: अमल कयो पियो ऐं ईरान जे बुनियादी ढांचे खे निशानो बणाए वियो त ख़िते जी बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहंदो. ईरानी फ़ौज जे तर्जुमान मोहम्मद अक्रमीनिया चयो त ख़िते जी मुस्लिम रियासतनि सां टकराव जो इरादो नाहे. जेकॾहिं अमरीका जी जंग जारी रही त जंग नवनि माज़नि ताईं पखिड़जी वेंदी. ईरानी फ़ौज मुल्की वक़ार, सलामती ऐं सरहदनि जो तहफ़ुज़ करणु ॼाणे थी. परॾेही ख़बरू इदारे मूजिबि ईरान बाबुल मंडप बंदि करण जे हवाले सां होसियन ताईं पैगाम पहुचाए छॾियो.

ईरानी परडे खाते के तर्जमान इस्माइल वकाई चाहिए तो अस्पताल थोड़ी तिबी मरकज के निशानों बढ़ाने चंकी दो मजम्मत जो अमल है। अमरीकी हमले का अहवास में बार कैंसर अस्पताल के हंगामी तौर खाली पाण के इंसानी हकन जो लंबरदार सदाईंदड़ अस्पतालन के निशानों बयान ते अखियों फेराए रहा आहिन।

पाकिस्तान एक भेरो बीहर अमेरिका ईरान में शुरू थियल चिकताण ते गणती जाहिर करे छी दूरियन का सब सबर जो मुजाहरो कर मुतालबो मसलो गालियन जरिए हल करण से जोर पड़े तजबान ताहिर हुसैन इंद्रापी है खिते की मौजूदा सूरत हाल से नजर आए पाकिस्तान मसले के हल लाए गालियन से यकीन रखे तो तकरार कें भी मुफाद में ना है पाकिस्तान अमन कोशिशन हथ नाए खो इस्लामाबाद मुफामती अदशनामे अमल जारी रहने घुर्जे।

0: वज़ीर-ए-आज़म खत्ते में जारी चिकताण सबब कंहिं बि इम्कानी चैलेंज के मुंह ॾियण लाइ तयारी जी हिदायत करे छॾी। पेट्रोलियम शयूं ज़खीरो करण ख़िलाफ़ बि कार्रवाई जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि इजलास में पेट्रोलियम शयुनि ऐं तवानाई बचत जी क़ौमी मुहिम में अवाम जे सहकार जी साराह। वज़ीर-ए-आज़म चयो त गुज़िरियल सादगी ऐं कफ़ायत शारी मुहिम में अवाम भरपूर किरदार अदा कयो। हुकूमती सब्सिडी सां तेल अघनि में वाधे जे असरनि खे मौसर अंदाज़ में कंट्रोल कयो वियो। आम माण्हुनि, मोटर साइकिल सवारनि, रिक्शा ड्राइवरनि ऐं ट्रांसपोर्टरनि खे बि तहफ़ुज़ ॾिनो वियो। पेट्रोलियम शयुनि जी हथरादू खोट पैदा करण ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। ज़रूरत पवण ते वक़्ताइती हिकमत अमली जोड़ी वञे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।